सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि है। तदनुसार 20 जून सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। समस्त श्रोताओं का अभिवादन करते हुए आरंभ करते हैं आज की प्रथम प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
1: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के

0: साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: प्रभु की स्तुति से पावन हो हर सुबह, भक्ति के मधुर स्वरों से शांत हो हर मन। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना, जहां हर भजन में ईश्वर के करीब ले जाता है। और मैं हूं अन्नपूर्णा, और आज के इस भक्तिमय सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। ईश्वर की भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो मन को विश्वास और जीवन की नई ऊर्जा देती है। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। ऐसी ही एक सुंदर कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद की। बालक प्रहलाद को भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी आस्था ने यह संदेश दिया कि सच्चे विश्वास के आगे हर बाधा छोटी हो जाती है।

भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, भक्ति प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव है। जब मन में ईश्वर का स्मरण होता है तो जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, सरलता और आनंद बनाए रखना चाहिए। गोकुल की गलियों में नटखट कान्हा की मुस्कान हर किसी के मन को प्रसन्न कर देती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं, भेंट नहीं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा समर्पण भी प्रभु को प्रिय होता है। माता शबरी ने वर्षों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। उनका प्रेम और विश्वास इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं उनके आश्रम आए और उनके प्रेम को स्वीकार किया।

सुबह की इस पावन बेला में कुछ पल अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों का नहीं भावनाओं का रिश्ता है। जहाँ प्रेम से भगवान को पुकारा जाता है, वहाँ कृपा का अनुभव अवश्य होता है।

0: इन्हीं मधुर भक्ति स्वरों के साथ अब वंदना के इस पावन सफर को यहीं विराम देने का समय आ गया है। आपके दिन की शुरुआत भक्ति के इस प्रकाश से हो, आपके हर कदम पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपके मन में हमेशा प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का दीप जलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ वंदना कार्यक्रम को देते हैं यहीं पे विराम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है आज का चिंतन बिंदु।
1: भातृत्व संबंध एक ऐसा संबंध कि प्रायः हम सब उन संबंधों में रचे बसे हैं। आज वह प्रेम वह भाव भातृत्व संबंध में भी न रहा जो भातृत्व संबंध में प्रायः आज के 20-25-30 साल पूर्व रहा करता था, कि बड़ा भाई बोले और छोटा भाई चुप होकर के स्वीकार करता था। आज सबको बड़ा बनने की होड़ है। हम रामकथा सुनते तो हैं, रामकथा दर्शन क्या कराती है कभी हमने समझने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा राम का चरित्र, लखन का चरित्र, भरत लाल जी का चरित्र और शत्रुघ्न लाल का चरित्र, मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता, जो प्रमाण हमारे राघवेंद्र सरकार और चारों भाइयों ने इस समाज को दिया है। एक भाई ऐसा है जिसे जब पता चलता है कि मेरे पिताजी से मेरी मैया ने कहा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, राम जी के चेहरे पे शिकन नहीं है, राम जी के चेहरे पे वही लालिमा, वही मुस्कुराहट है, मेरा भाई ही तो बन रहा है। कभी चिंतन करिए उस भातृत्व प्रेम का कि जिस दशरथ जी का शरीर क्षीण पड़ा हुआ है, जो राम राम कह के व्याकुल हैं और वहाँ पे

0: राघवेंद्र सरकार अपनी माँ से आके कहते हैं तो किसी की बुराई नहीं करते, कैकेयी मैया के बारे में भी कुछ नहीं कहते। कौशल्या मैया पूछती हैं, क्या हुआ, क्या कारण है, पूरे अयोध्या में हल्ला मचा हुआ है? तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भरत राजा बनने वाला है, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनने वाला है। एक बड़े भाई का कर्तव्य एक छोटे भाई के राजा बनने पर इतनी प्रसन्नता राघवेंद्र सरकार को है। कौशल्या मैया ने कहा, आप कहाँ, आपके बारे में क्या सोचा? तो उन्होंने कहा, पिताजी ने मुझे उससे भी बड़ा राजा बना दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, किसी की बुराई नहीं, राघवेंद्र सरकार का त्याग, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इसकी प्रसन्नता साफ चेहरे पे झलक रही थी। कोई सिकन नहीं, कोई कष्ट नहीं, वही माधुर्य, वही प्रेम। और इधर भरत लाल जी महाराज को जब पता चला, भरत लाल जी को जब सूचना मिली और भरत लाल जी जब आए और पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई को बन जाना पड़ा। कैकेयी मैया से कहते, माँ, हर माँ बालक का चतुर्दिक सम्मान मान बढ़े इसलिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन तू मेरी माँ होकर मुझे तुमने इतने बड़े पाप का कारण बना दिया। मुझे तेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, न मैं जन्म लेता और न मुझे अपने भाई को वन में जाने का कारण मैं हूँ। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे पिताजी इसलिए नहीं मरे कि मेरे भाई राघवेंद्र सरकार बन जा रहे हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु इसलिए हो गई कि मैं पापी भरत का मुख कैसे देखूं जिसके कारण उसका बड़ा भाई बन चला गया हो। मेरा मुख मेरे पिता कैसे देखते हैं जिसने अपनी माँ को त्याग दिया हो कि माँ, तुमने इस राज सत्ता के कारण मेरे भातृत्व प्रेम में जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा वह तुमने मांग लिया। एक भाई है लखनलाल जिसने अपने पत्नी तक से पूछने नहीं गए और 14 वर्षों तक वह जंगल में रहे, सहन नहीं की और अपने भाई के रक्षणार्थ खड़े रहे कि मेरा भाई अकेले कैसे जाएगा। अपनी माँ से पूछते हैं क्या करो, माँ ने कहा कि तुम मुझसे पूछने आए हो। लखनलाल जी महाराज माँ का तो आशीर्वाद लेने राम जी के कारण गए लेकिन पत्नी के पास नहीं गए और वो निकल पड़े अपने भाई के साथ वल्कल वस्त्र धारण करके। और एक भाई शत्रुघ्नलाल जब देखा कि मेरा एक भाई वन में है और एक भाई उसकी सेवा में है और एक भाई भरत हैं जो नंदीग्राम में जाके तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मौन होकर इस अयोध्या का साम्राज्य चलाना है लेकिन यह साम्राज्य का राजा तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही हैं। एक चारों भाई की इतने स्नेह और इतने प्रेम का दर्शन करने के बाद भी अगर हम अपने भाइयों में प्रेम न कर पाएँ तो भातृत्व संबंध को समझना इससे सरल नहीं हो सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रात्रि 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत का प्रसारण लखनऊ केंद्र से आप सुन सकेंगे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9:50 पर। कलाकार होंगे अली हैदर। दोपहर 12:55 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद सुल्तान खान को। और रात्रि 8:15 पर इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे अली हैदर को। शाम 7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आज का संगीतकार। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शंकर जयकिशन की गीतों को।

उत्तम संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी आप सुन सकेंगे प्रातः 7:31 पर, 8:45 पर होगा हिट्स सुपर हिट्स। प्रातः 10:05 पर गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। प्रातः 11:30 पर फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम आप सुनेंगे गीतांजलि। और इसी क्रम में कार्यक्रम गाने सुहाने दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00।

प्रातः 11:05 पर लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आनंदेश्वर पाठक की आवाज़ में गीतों को। इसी के साथ आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा को देते हैं यहीं पे विराम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है मानस गान।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीत मय पाठ मानस खान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के

0: खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
6: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टीतमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रत्यपादीत् यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन स विशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400,000,000,000 रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति। सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The president and prime minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The securities

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

0: मिली जुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
2: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
4: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
2: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
4: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
2: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
5: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
2: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12

0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

फिल्म जब जब फूल किले से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत कल्याण जी आनंद जी के थे और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। संगीत शंकर जयकिशन के हैं और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

फिल्म तीसरी कसम से ये गीत आप सुन रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के गीत हैं। आवाज़

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
4: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
3: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
4: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

फिल्म हम दोनों से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में संगीत जयदेव का था और गीत के बोल लिखे थे शाहिर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ममता से, मजरूह सुल्तानपुरी के गीत और रोशन का संगीत।

फिल्म पिया का घर से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पूर्वा सुहानी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
8: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
7: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
7: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
9: We have been able to achieve that in the first.
10: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
9: They are all designed in India now.
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
11: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
12: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
7: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
14: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
13: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal.
15: This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
16: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2-day visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate 3 indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok, and INS Agraya, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 500.

0: in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। यह इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50 लाख किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले

0: बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निजाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोबारा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीकेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दीगर इकदामात इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल एसकेएम मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फरहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाब्ता जाति फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पेन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और क्यूआर कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निजाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह निजाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यह 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मॉनसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मज़ाफ़ात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोजाना प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक़वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोजाना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रसिद्ध फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजनीति से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वेकअप सेट से।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

सलामे इश्क से ये गीता बबी आप सुन रहे थे। इसी के साथ हिट्स सुपर हिट्स कार्यक्रम को देते हैं यहीं पे विराम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
2: कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर, जन चौपाल संगोष्ठियां, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों, तहसील परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में

0: गंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल बंसल ने बताया।
1: योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश।
0: कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सोरों, सहावर, गंज दुंडवारा, अमापुर और सिरपुरा में एक एक केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी।
2: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। मालिक और स्वर है सोने लाल का।
3: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5,07,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को PM स्वनिधि योजना से 74 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। PM विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों को KCC योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा।

0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक नारायण प्रजापत ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक खातों से गायब धनराशि 20 लाख से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूलों में स्टॉल लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। गांव-गांव बुकलेट पेपर वितरित कर छोटे छोटे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। कोई भी घटना घटित होने पर हेल्पलाइन नंबर 112, आपातकालीन 1076 मुख्यमंत्री और 1090 वुमेन पावर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशकांत।

0: आप सभी का खैर मकदम है। सामिन, कभी सोचा है आपने कि सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, फिर भागते हुए अपने काम पर जाते हैं। कई बार नाश्ता भी छूट जाता है और लंच तो दोपहर के बजाय शाम के तकरीबन 3-4-5 बजे ही होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो नींद के वक्त नींद कहाँ? ये है हमारी तर्ज जिंदगी जो कितना बदल चुकी है, और इस बदली हुई तर्ज जिंदगी का असर कहाँ दिखता है? यकीनन हमारी सेहत पर। कभी कमर दर्द, माइग्रेन, शुगर, बीपी, हत्ता की 30 की उम्र में 60 वाली बीमारियां, फिर भी हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं। इसीलिए आज के सेहतनामे की खसूसी थीम है हमारी तर्ज जिंदगी और सेहत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ENT, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: आदाब, अस्सलामु अलैकुम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, योगा की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है?
2: योगा को अगर आज की जो आपने बात की जदीद तर्ज जिंदगी
0: जी,
2: जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उसमें तो अब योगा को अपनाना हमारे लिए एक जरूरी चीज हो गई।
0: बिल्कुल,
2: योगा को एज एन एक्सरसाइज लें, अपने दिमागी सुकून के लिए लें, या इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर हम अपने आप को योगा को दें तो उसके तमाम फायदे हैं
0: जी।
2: और अगर एक्सरसाइज के तौर पर देखें तो ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमें तमाम जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके रिस्क को कम करता है, और जिनको है उनकी मेडिसिन की डिपेंडेंसी को कम करता है
0: जी।
2: जो जरूरी चीज है कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक, क्योंकि योगा जो है वो एक्सरसाइज अपने शरीर को दिमाग से जोड़ने का भी काम करता
0: बिल्कुल,
2: है।
0: बिल्कुल,
2: सुकून से करने वाली चीज है
0: जी।
2: देखा जाए तो ये सबसे सस्ती एक्सरसाइज है, ना कहीं आपको जाना है, एक छोटा सा योगा मैट लिया,
0: बैठ गए
2: किसी कोने में डाल दिया और अपने योगा किया,
0: बिल्कुल
2: बहुत अच्छी चीज है।
0: अच्छा, देखते हुए डॉक्टर साहब, हुकूमत हिंद ने इसको प्रमोट किया है और अच्छा किया है, क्योंकि हमने देखा है हमारी ऐसी तर्ज जिंदगी हो गई है कि हम घर में रहें, बाहर रहें, गर्मी के मौसम में एसी में रह रहे हैं और गाड़ी में है तो एसी चल रही है, मेहनत का कोई काम रह नहीं गया, पसीना निकल नहीं रहा, तो हुकूमत हिंद ने जो इसको एक इनिशिएटिव जो लिया है वो बेहद जबरदस्त थे और मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतर होगा। आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस पे इसका रोल किस तरह से पड़ता है? हाँ, आपकी बात वो अधूरी रह गई थी डॉक्टर साहब।
2: नहीं, मेंटल स्ट्रेस जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने या कहना चाहिए कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने हमें रफ्तार तो दी है जिंदगी को,
0: बिल्कुल,
2: बहुत आसानियां भी बहुत पैदा करी है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो है मेंटल स्ट्रेस। इंसान स्ट्रेस में चला गया,
0: बिल्कुल,
2: इंसान जहनी तौर पे थक जाता है दिन भर काम करके, तो उसमें जो ये आप आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट जो एक्सरसाइज को अपने देते हैं या योगा को देते हैं, तो उसमें जो एक सुकून जिंदगी को आपके आपके जहन को मिलता है योगा से, तो एक चीज बड़ी क्लियर जो साइंटिफिक तौर से प्रूफ है कि हमारे जो शरीर में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं,
0: बिल्कुल,
2: तो योगा करने से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है
0: जी जी जी,
2: तो जो हमें एक फील गुड फैक्टर फील कराता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात करें
2: जी,
0: और एक परसेप्शन भी है और मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए, सुबह की जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो इतनी अहम क्यों है?
2: सुबह की एक्सरसाइज जो सबसे पहले अहम अगर है किसी वजह से, तो वो ये है कि सुबह का जो वक्त होता है वो साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि सबसे ताजी हवा होती है
0: जी,
2: पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो उस वक्त जब आप काम करते हैं और जो हमारे इंसान की जो जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो सही वक्त होता है कि अगर हम उसको एक्सरसाइज से शुरुआत करें तो हमारा दिन बहुत बेहतर बन जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो बड़ी बात है मैं बताना चाहूँगा कि सुबह के वक्त जो एक्सरसाइज करने का एक जो फायदा ये भी है कि ये जो जरूरी काम होते हैं या जो इमरजेंसी आती है तो ये सुबह के वक्त थोड़ी कम होती है। अगर आपने अपना एक्सरसाइज का या योगा का टाइम आपने मान लीजिए रात के 8 बजे सारे काम खत्म करने के बाद

0: किया। अब वो 8 बजे के करीब घर पे कोई मेहमान आ जाएगा,
1: मेहमान आ गया,
0: आपको किसी जरूरी काम से कहीं जाना है, किसी शादी पार्टी में जाना है, तो वो मिस हो जाएगी।
1: मिस हो जाएगी।
0: मॉर्निंग टाइम को अगर आप अपनी फिटनेस के लिए देते हैं तो वो उसमें मिस होने के चांसेस कम होते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है।
1: बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी बात करें तो डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी के बारे में, तो सुबह फजर के बाद अक्सर 3-4 दोस्त हैं और लेकर क्रिकेट के पूरा किट लेकर पहुंच गए खेत में, सामने मैदान है और वहां पर 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग जैसी करनी कर ली,
0: बहुत अच्छा
1: वापस आए पूरे पसीने से लथपथ,
0: बेहतरीन।
1: लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो एक
0: वो,
1: अलग
0: वो,
1: ही
0: वो आप खुद फील करते होंगे कि वो क्या चीज जो मिली। अगर वही चीज आप शाम में क्रिकेट खेलेंगे तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी,
1: बिल्कुल नहीं आएगी,
0: और हो सकता है रोज खेल भी ना पाए,
1: नहीं मुमकिन भी
0: आपको
1: नहीं,
0: मौका भी नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। कुछ ऐसी बीमारियां ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ये सही नहीं होती,
0: हाँ।
1: जैसे शियाटिका है, स्पॉन्डलाइटिस है, पैरालिसिस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लोगों की कहावत है अक्सर, क्या ये सच है?
0: नहीं, ये बहुत हद तक सच है कि
1: जी
0: ये जो बीमारियों का नाम आपने लिया है, जैसे शियाटिका,
1: जी
0: ये नर्व कंप्रेशन का मामला है।
1: बिल्कुल।
0: आपने बात की स्पॉन्डलोसिस या स्पॉन्डलाइटिस,
1: जी
0: ये हड्डियों के आपस में नज़दीक आ जाने,
1: जी
0: चिपकने
1: स्पेस,
0: या इनके स्पेस कम हो जाने का मामला है। और दूसरा आपने बताया पैरालिसिस,
1: जी
0: पैरालिसिस में दिमाग का जो कांटेक्ट है आपके मसल से दूर हो
1: बिल्कुल।
0: जाना। तो ये दवाएं इसमें बहुत हद तक रोल करेंगी कि वो न्यूरोमोटर्स हो सकती हैं, आपके ब्रेन को कम कर सकती हैं।
1: जी
0: लेकिन अगर शियाटिका के मामले में देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं कि उस नर्व को खोलने की कोशिश
1: खोलने की,
0: करते हैं,
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेचिंग है वगैरह ये सब।
1: जी बिल्कुल।
0: और अगर आप स्पॉन्डलोसिस या स्पॉन्डलाइटिस की बात करें तो उसके अंदर भी वो ट्रैक्शन वगैरह लगा करके उसके अलग एक्सरसाइज वो फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा
1: जी जी
0: बताएंगे
1: जी
0: आपको,
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसके बिना वो नहीं काम चलेगा, खाली
1: बिल्कुल
0: दवाओं से नहीं काम चलेगा।
1: हाँ
0: और पैरालिसिस में तो बिल्कुल आधे से ज़्यादा का रोल है एक्सरसाइज और इंसान की अपनी खुद के सेल्फ का कॉन्फिडेंस कि हमें ये करना है,
1: जी
0: उसमें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी या हमारी एक्सरसाइज का इतना रोल होता है कि वो कहते हैं मस्कुलर प्लास्टी करती हैं, वो दिमाग की नसों को शरीर की मसल से फिर से जोड़ने का काम
1: बिल्कुल
0: करती हैं ये
1: जी
0: एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये
1: है।
0: तो बिल्कुल ज़रूरी है, बिना एक्सरसाइज की नहीं चीज़ें।
1: और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये जो योगा है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
0: डेफिनेटली
1: अब इस वक्त मेरे जहन में सवाल आ रहा है, हमारे जो सामेईन हैं वो गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, शहर वालों की मैंने देखा है तर्ज ज़िंदगी वो ये है कि वो मॉर्निंग या इवनिंग में जाके जिम क्लब होते हैं, वहाँ पर जाके ज़बरदस्त पसीना बहाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब गांव की बात करते हैं तो वहां अभी ये चीजें मौजूद नहीं हैं। क्या बिना जिम के, विदाउट जिम के अच्छी एक्सरसाइज की जाती है?
0: बिल्कुल की जा सकती है, और ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास वक्त नहीं है जिम जाने का या जिम की फैसिलिटी उनके घर में, उनके शहर में, घर के आसपास। आप तो शहर की बात कर रहे हैं, ज़रूर जिम है, लेकिन कितने लोग जिम जा सकते हैं, उनके पास वक्त है या टाइम है? घर पे सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं जो जिम में मशीनों पर होती हैं, घर में जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं। आप अगर डंबल की बात करें तो उनकी जहाँ पे पानी की 2 बोतलें ले लें 1 लीटर की,
1: बिल्कुल
0: उससे वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए एक सिंपल से रबर बैंड ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: रस्सी कूदना
1: हाँ हाँ
0: बहुत आसान है। स्ट्रेचिंग के लिए स्क्वाड है, पुशअप है, इसके लिए कौन सी मशीन की
1: सही
0: जरूरत
1: बात
0: है?
1: है,
0: ये तो आप घर पे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो टिप्स आप दे रहे हैं हमारे सामीन बड़ा गौर से सुन रहे हैं और यकीनन वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब बात अभी चल रही थी जदीद तर्ज जिंदगी की,
0: जी
1: आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, मैं फिर से सवाल उसी तरह आ रहा है, इसका नेगेटिव असर क्या हुआ हमारे जिस्म पर?
0: हमारे जिस्म पे आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, या ये कह रहे हैं सोशल मीडिया से भरी हुई जिंदगी है,
1: जी
0: 8-8, 9-9 घंटा कंप्यूटर में बैठ के काम करने से या ऑफिस में बैठ करके काम करने से हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हुई है।
1: बिल्कुल।
0: फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें, ये भी तो तर्ज जिंदगी आज की जो है,
1: बिल्कुल
0: इसी का
1: बिल्कुल
0: तो एक हिस्सा है। और आप ये मानिए यकीन कि इन खानों में कोई बेहतरी नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट नहीं होता है, हमें जो विटामिन चाहिए, जो हमें मिनरल्स चाहिए, इन फास्ट फूड जंक फूड में नहीं होते हैं। जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको ये लगता है कि हम कोई इंसान है वो 20 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाता है, लेकिन क्या वो चल के जा रहा है? क्या वो साइकिल चला के जा रहा है? नहीं, मोस्टली लोग जो है सफर आजकल मेट्रो से, बस से, या कार से, या अपनी बाइक से करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: 2 किलोमीटर भी किसी का ऑफिस है तो वो पैदल चल के नहीं जाता।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो जरूर है भाग दौड़ है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है, इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी कमी की वजह से तमाम बीमारियों को बढ़ावा देती
1: है। डॉक्टर साहब भाग दौड़ भरी जिंदगी की बात चल रही है, आपकी भी जिंदगी बेहद मसरूफ है, बहुत भाग दौड़ आपकी जिंदगी में रहती है, लेकिन आप खुद फ्रेश होने के लिए किस तरह का काम करते हैं? मैंने सुना था किसी से कि आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, वो क्या गुनगुनाते हैं, आप अपने आप को कैसा फ्रेश रखते हैं, जरूर हमारे सामने इनको सुनाएं या बताएं आप।
0: नहीं, बस ऐसे एक गजल का کے دو شعر ہیں.
1: جی جی بالکل
0: ہے تو غزل سعد اللہ خان غالب صاحب کی.
1: بالکل
0: بازیچہ اطفال.
1: جی جی
0: معنی میں بتا دوں یہ بچوں کا کھلونا.
1: بالکل بالکل.
0: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے.
1: کیا بات ہے.
0: بازیچہ اطفال ہے

0: हाँ, क्या अंदाज है
1: ये
0: भाई, प्योर प्योर।
1: मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे,
0: आए है, क्या बात है।

0: मुझे यकीन है कि हमारे सामीन बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। जितना जबरदस्त मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने शेर को लिखा है और उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारे डॉक्टर जुबेर अहमद खान साहब ने किया, और बहुत ही आवाज और अच्छी क्लासिकल अंदाज में आपने पढ़ा, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है जब आप डॉक्टर साहब रात में लेटते होंगे और कभी गुनगुनाते होंगे तो आपको तो नींद जबरदस्त आती होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नींद आजकल लोगों को आ नहीं रही, नींद ना आने की बड़ी वजह क्या है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये नींद ना आने की जो समस्या जो आज के ज़माने में ये बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल,
0: बिल्कुल
1: और एक हमारी जिंदगी में जो भाग दौड़ के साथ साथ एक जो कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन तक तो ठीक है, एक शॉर्टकट जो है ना, ये हम जो ये सोशल मीडिया देखते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें जो रील्स आती हैं या जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये मोस्टली कामयाब लोगों के होते हैं, कामयाब जिंदगी के बारे में होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसको देख के ये खासतौर से बच्चों में और सारे यूथ में भी होता है कि ये हम कैसे यहाँ पहुंच जाएं, या वो कोई एक रील डालता है या वो कोई कंटेंट डालता है तो वो उसके अंदर वो डोपामिन लूप बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें होता क्या है कि वो हार्मोन बार बार निकलता है इस बात के लिए लाइक्स कितने आए, आए कि नहीं आए,
0: राइट राइट,
1: कमेंट्स आए कि नहीं आए, कमेंट्स अच्छे आए कि बुरे आए, अच्छे आए तो खुश हो गया, और अगर उसमें किसी ने एक बुरा कमेंट डाल दिया तो वो टेंशन में आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे स्ट्रेस लाती हैं, और जो स्ट्रेस में इंसान रहेगा तो फिर नींद तो रात में गायब हो जाना है। अगर आप अच्छी नींद बेहतर लेना चाहते हैं तो अपने सोने के टाइम से एक घंटा पहले मोबाइल को ऑफ करके रख दें, मोबाइल से दूरी बना लें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें, बेहतरीन नींद आएगी, करके देखिए।
0: नहीं, ये आपकी बात डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बेहद खतरनाक होता जा रहा है, हमारे जिस्म के लिए, हमारी नींद के लिए, हर चीज के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने खान पान की बात करी दी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात और कर ली जाए सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। बहुत सारे ब्रांड इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, अलबत्ता इतना जानना जरूर चाहूंगा कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मशरूबात हो सकते हैं जो हम घर पर तैयार करें और वो हमारे सेहत के लिए काफी मुफीद साबित हो सकते हैं, जैसे नींबू पानी या वगैरह। डॉक्टर साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ हमारे सामने इस बारे में जरा बता दें।
1: सॉफ्ट ड्रिंक्स वो किसी नाम से आते हो, ये ब्रिवरेज ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर हैं, ये किसी भी सूरत में आपके शरीर के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कोई रिफ्रेशमेंट नहीं देते हैं, कहीं से गर्मी को कम नहीं करते हैं, और एक जो मिथ है कि हम ये सोडा पी लेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है सर, ये गलत है। इससे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से एसिडिटी बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस ट्रबल करता है, ये इससे तो दूर ही रहना है, इसका कोई फायदा नहीं।
0: बिल्कुल, बाकी चीजें तो आप घर पे,
1: वो जो नींबू पानी है, नींबू का शरबत बना के पिए, आम का शरबत बना के पिए, बेल का शरबत पिए, जितने मौसमी फल हैं उनको खाएं, उनका शरबत बना के पिए।
0: बिल्कुल सही बात है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, काफी हद तक आप हेल्दी रह सकते हैं। खान पान की बात करें तो बाहर के खाने से जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं चलता कि किस तेल में बनाया गया, कैसा तेल है, इसलिए इन चीजों से बचाव जरूरी है। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की, फिर इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, बच्चे क्या, मैंने बुजुर्गों को अब देखना शुरू किया है कि गाड़ी पर राइड के दौरान वो ईयरफोन का इस्तेमाल करना, नेक बैंड का इस्तेमाल करना, ब्लूटूथ का रेगुलर इस्तेमाल करना, इसका हमारे कान के साथ साथ और क्या परेशानी होती है, किस तरह की बीमारियां इससे बढ़ती हैं?
1: कान की बीमारियों में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऊंचा सुनाई देने लगता है।

0: लोगों को, और ये हियरिंग लॉस तक जाता है बच्चों में। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे, अगर कान में ये जो गैजेट्स लगा करके जो बच्चे आजकल म्यूजिक सुनते हैं, जिम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये हमारे कान को खराब कर रहा है, हियरिंग लॉस ला रहा है, जहन में स्ट्रेस ला रहा है, और इससे एक बड़ा खतरा ये है कि अगर इस तरह के हियरिंग साउंड सिस्टम को कान में लगा करके, जिसको ईयरफोन कहते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हुए हैं, लोग गाड़ियों से कट गए हैं, ट्रेन को देखा नहीं, पता नहीं चला, पार कर गए और ट्रेन आके चल गई।
1: जी डॉक्टर साहब, जदीद टेक्नोलॉजी, हम जदीद तर्ज जिंदगी पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का हमारी सेहत पर, हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें।
0: दोनों बातें करूंगा। जदीद टेक्नोलॉजी का फायदे की अगर आप बात करना चाह
1: जी
0: रहे हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: हाँ, फायदे इससे वाकई बहुत हुए हैं।
1: जी
0: आजकल लोग स्मार्ट वॉच से, अपने गैजेट से, ऐप से अपने स्टेप को, अपने
1: काउंट कर
0: SpO2
1: सकते हैं,
0: लेवल, ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और टेली मेडिसिन का आजकल बड़ा चलन बढ़ा है। अपनी
1: जी
0: बीमारियों को लोग अगर नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, दूर है, वक्त नहीं है, तो वो टेली मेडिसिन के थ्रू उनकी अर्ली डायग्नोसिस बन जा रही है, उनको सही राय मिल जा रही है, मशवरा मिल जा रहा है, अपनी रिपोर्ट्स को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
1: जी
0: बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अलार्मिंग गैजेट्स होते हैं, वो आपकी हार्ट रेट को या आपके O2 लेवल को बता देते हैं, अलार्मिंग होते हैं,
1: जी
0: तो उससे इंसान, तो ये सारी चीज़ें तो ये फायदेमंद हैं। हमारे जो गैजेट्स हैं ये तो ये
1: जी
0: काम किए हैं, और ये जदीद टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि इससे बहुत फायदा उड़ रहा है।
1: चलते चलते आखिरी सवाल मेरा, और उसके बाद आप एक पैगाम आप हमारे सामेईन को देंगे। हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त नौजवानों में दो बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं, एक है बीपी और दूसरा है शुगर,
0: जी
1: इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे वो कैसे बच सकते हैं?
0: देखिए, ये बीपी और शुगर, ये दोनों बीमारियां आमतौर पे कहते हैं खानदानी है,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन इनको बढ़ावा मिल रहा है हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी जो जदीद तर्ज जिंदगी है,
1: जी
0: इनको बढ़ावा मिल रहा है, ये जल्दी होने लगी है। जैसे आर्थराइटिस
1: हाँ
0: तो होता है, लेकिन ये अर्ली आर्थराइटिस क्यों हो रहा है,
1: बिल्कुल सही बात
0: ये हमारे अमल से हो रहा है, हमारे काम काज करने के तरीके से हो रहा है,
1: जी
0: हमारी जो लाइफ स्टाइल, हमारे जिंदगी का जो टाइम टेबल है, इसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं।
1: जी
0: ये हो तो किसी को भी सकती हैं, लेकिन जो आपने कहा ये जल्दी हो रही हैं, उसका यही है हमारा रात भर जगना,
1: बिल्कुल
0: दिन भर सोना, वक्त की पाबंदी ना करना, खाने पीने का ध्यान ना रखना,
1: फाइबर की कोई डाइट
0: और
1: नहीं।
0: हमारी अगर बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं और हम जंक फूड और ये पैक्ड फूड पे अगर हम जी रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए फिर आप तैयार हैं कि मोटापा भी आएगा, वजन भी बढ़ेगा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां, इनसे बचना है तो इन चीज़ों से दूरी करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी को सिस्टम में लाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब आप हमारे सामाइन को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में?
0: बिल्कुल, पैगाम मेरा फिर वही है कि जिंदगी जो भाग दौड़ की जिंदगी है, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जदीद तर्ज जिंदगी की बात हो रही है और सेहत की, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसने हमारी जिंदगी को रफ्तार दी है, हमें कामयाबी की तरफ आसानी पैदा की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा पैगाम यही है
1: जी
0: कि अपनी जिंदगी में टाइम टेबल बनाएं,
1: बिल्कुल
0: रात में सोना, सुबह में जल्दी उठना,
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज को वक्त देना,
1: जी
0: आप अच्छी सेहत के बिना कोई कामयाबी, कोई पढ़ाई आपके लिए बेकार है।
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: बीमार इंसान कामयाब हो के क्या करेगा?
1: बिल्कुल सही बात है,
0: कामयाब हो भी नहीं सकता, हो भी जाएगा तो क्या होगा?
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई
1: बिल्कुल
0: लिखाई, कैरियर बहुत जरूरी है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सेहत को आप प्रायोरिटी दें, पहली प्रायोरिटी दें,
1: जिसमें सबसे
0: बाकी
1: पहले
0: सारी
1: है,
0: चीजों को सेकेंडरी कर दें।
1: बिल्कुल सही बात है, ये पैगाम आपका बेहद खूबसूरत है और कारामत भी। डॉक्टर साहब आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए।
1: सामिन ये थे जनाब डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब, जिनसे अभी आप कारामत गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपना पैगाम हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुन लें, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त, आदाब।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम।
3: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
4: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
3: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
4: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बीफार्मा, एमफार्मा और डीफार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
5: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
4: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
5: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।

इन चुलबुले अंदाज के गीतों के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इचकल करंजी के कल्लपंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य

0: प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जय संतोषी माँ से। उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं।
2: मैं तो आरती उतार।
1: संगीत सी अर्जुन ने दिया है और गीत के बोल लिखे हैं।

गाते गुनगुनाते कार्यक्रम की शुरुआत हमने भक्ति गीत से की, माता संतोषी की आरती से की। चलिए सुनते हैं अब फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिमान से, लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया है एस टी बर्मन।

कार्यक्रम में अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म हीरो से। आनंद बख्शी के गीतों को सजाया है अपने संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की है।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दर्द से। गीत नक्श लायलपुरी का है और संगीत दिया है खयाम ने, आवाज लता मंगेशकर की।

गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: चंदन का एहसास।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: सारी दुनिया दीवानी होगी।
1: फिल्म आनंद आश्रम से

यशुदास और प्रीति सागर की आवाजें हैं। संगीत श्यामली मिश्रा मित्रा का है और गीत के बोल लिखे हैं इंदीवन ने।

0: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमानुष से।
1: तेरे गालों को चूमूं झुमका बनके,
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं।
1: देखा नव यौवन तो मन खो गया।
0: इंदीवर का गीत और संगीत श्यामल मिश्रा के।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म काला सोना से। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और आवाज़ आशा भोसले और डैनी डेंजोगापा की थी।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम।
1: खास कार्यक्रम में आज रोरा सभे सुन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत की ओर बढ़त कदम के लेके भोजपुरी में एक खास रिपोर्ट प्रस्तुत करता हुए आकाशवाणी का समाचार संपादक प्रेम चंद्र गुप्ता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीतल 10 जून के सबसे बेसी समय ले देश का प्रधानमंत्री पद पर रहले के गौरव मिली गई। उनके दूरदर्शी अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतन से प्रेरित भारत में पिछला 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आयल हो। श्री मोदी के अगुवाई में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, लोक कल्याण और मध्यम वर्ग के हित से लेके कई गो महत्वपूर्ण पहल कई गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में पिछला 12 बरिस में किसानन का आय बढ़ावे बदे कई गो जरूरी कदम उठावल गई।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है।
2: महिला सशक्तिकरण के दिशों में केंद्र सरकार कई गो खास कदम उठावले हवे।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है।
2: श्री मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार मध्यम वर्ग के कल्याण बदे हमेशा प्रतिबद्ध हो।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
2: कारोबार कैले में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार उल्लेखनीय कदम उठावले हौ।
3: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछला दिन एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत आर्थिक विकास के स्थिरता आत्मविश्वास निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ है। जोड़ले हवे एगो रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में मिलल 12 साल के उपलब्धियों पर चर्चा करे बदे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सतही केंद्र सरकार का कई गो मंत्री अलगी अलगी जगहिनी पर कई गो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहल हमें। रक्षा मंत्री आ लखनऊ का सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में 7 जून के आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम के संबोधित कहले। इस मौका पर वहां के कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत का वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ल हो और लोक कल्याणकारी योजना का लाभ समाज के आखिरी मनैले पहुँची रहल बा। श्री सिंह कहले कि प्रदेश का राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बनी रहल हो। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यही दिन ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद कैले आ केंद्र सरकार का 12 बरिस के उपलब्धियों पर चर्चा कैले। श्री चौधरी पार्टी का जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठकी कई के कार्यकर्ता आ पदाधिकारी लोगिन से संवादो कैले और संगठन से मजबूती बदे एकजुट होके कार्य कैले का आह्वान कैले।
5: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
2: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले 7 जून के वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में किसानन, गरीबन, महिलन और नौजवानन का विकास हो रहल हो।
6: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है, उनके पास मेजोरिटी है।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओर से अपने कई गो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई वाला केंद्र सरकार के 12 बरिस के उपलब्धियों के बारे में चर्चा कई जा रहल हो। मुख्यमंत्री 2 जून के कुशीनगर जिला में आयोजित एगो कार्यक्रम में कहले कि डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार कैले हमें। श्री योगी कहले कि सरकार आखिरी मनैले योजना का लाभ पहुँचावे बदे कार्य कई रहल हो।
7: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ।
2: प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 7 जून के आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 जून के सबसे बेसी समय ले प्रधानमंत्री पद पर रहले के गौरव मिलने पर बधाई दिले।
8: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेलो मिर्जापुर जिला में 7 जून के आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिहलीन। इस मौका पर केंद्रीय मंत्री कहलीन की जन समस्या

0: समस्या क जल्दी निस्तारण सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता हौ। एमे कौनहुं स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कइल जाई।
1: खास कार्यक्रम में आज रोरा सभे सुन ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत की ओर बढ़त कदम के लेके भोजपुरी में एगो खास रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहे आकाशवाणी का समाचार संपादक प्रेम चंद्र गुप्ता।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
3: ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है,
6: उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक। RHL

0: गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: लोकरंग के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आनंदेश्वर पाठक। आइए सुनते हैं इनके स्वर में पूर्वी गीत। आकाशवाणी

0: लोकरंग कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, आकार हैं आनंदेश्वर पाठक।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम जारी रहेगा पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं आनंदेश्वर पाठक।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे आनंदेश्वर पाठक। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गीतांजलि कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म है हॉलीडे।

कुणाल गांजीवाला के स्वर में आप सुन रहे थे हॉलीडे फिल्म से इस गीत को। गीत को लिखा था निलेश ने और संगीत दिया था रंजीत ने। और आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है रहना है तेरे दिल में।

बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में आपने सुना रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म से इस गीत को। संगीत दिया था हैसर ने और गीतकार थे समीर। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म है धूम।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कलयुग फिल्म से अभी आपने सुना राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में इस गीत को। संगीत दिया था रोहेल हयात और फैसल रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे थे सईद कादरी ने। अगला गीत फिल्म है जहर।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे जहर फिल्म से इस गीत को। बोल थे सईद कादरी के और धुन तैयार की थी अनु मलिक और रूप कुमार राठौर ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है हम तुम। आवाज़ें हैं बापुल सुप्रियो और अलका याग्निक के, शब्द रचना प्रसून जोशी के और तर्ज तैयार किया है जतिन ललित ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है और आइए अब हम सुनते हैं नाटक। शीर्षक है बेटी धान की विहान।

0: प्रसूति गृह में कन्या के जन्म लेते ही माता पिता के मन में सोच व्याप्त हो जाता है, साथ ही लंबे भविष्य का सपना चलचित्र के भांति गुजर जाता है। पराया धन तो वो तभी से मान ली जाती है।
1: बेटी, पराया धन तो है जरूर, मगर वो दान स्वरूप दी जाती है। जितना भी दान प्रक्रियाएं हैं, कन्या दान सर्वोपरि है। इसी दान के चलते सृष्टि की प्रक्रिया निरंतर है।
0: कन्यादान की प्रक्रिया एक विशेष संस्कार के तहत संपन्न होती है। भारतीय हिंदू समाज में 16 संस्कारों का प्राविधान है, जिसमें विवाह संस्कार का एक अलग महत्व है। इस संस्कार में पिता अपनी बेटी का हाथ योग्य वर के हाथ में सौंपकर कन्यादान संपन्न करता है।
1: स्नेह से पाली गई दुलारी बेटी विवाह योग्य होने को होती है, तभी से माता पिता चिंतित हो जाते हैं। बेटी के परोक्ष में आपस में चर्चा करते हैं।
2: सुन रहे हैं जी, बेटी 17वें में आ गई, वर कहीं रखा पड़ा नहीं है, अरे ढूंढना पड़ेगा, ये काम हाथ पर हाथ धरे नहीं होगा।
3: लग रहा है भोजन बना रही, घर का सारा काम, सबका देख रेख। यदा कदा रसोई घर में नजर डालता हूँ तो पुस्तकें भी पाता हूँ, पढ़ती होगी समय निकलने पर।
4: अम्मा, ये रही आपकी चाय और ये रहा बाबूजी का काढ़ा, भोजन भी बना कर रख दिया है। 2-4 दिन और क्लास है, मैडम जी का क्लास पूरा नहीं हुआ है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, समय से पहुंचना है। आप लोग वक्त पर भोजन कर लीजिएगा, बर्तन मत साफ कीजिएगा अम्मा।

0: तो सचमुच बड़ी हो गई, शादी योग्य। मैं निश्चिंत बैठा था।
1: आप आज देख रहे हैं, मैं तो रोज देखती हूँ ना। रात में कभी कभी नींद नहीं आती। फाइनल परीक्षा के बाद जब हर वक्त घर में रहेगी तो कई बार नजर आएगी। अभी तो दिन विद्यालय में और रात रसोई घर में कटता है।
0: ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। आज मेरी आंखों का पट्टर खुल गया।

0: आपसी मंत्रणा एक दूसरे को प्रभावित करता है। पिता निकल पड़ता है बेटी योग्य वर के तलाश में, भटकता तो कई जगह है, कई दरवाजे पर फेरी लगाता है, हाथ जोड़ता है, पांव पड़ता है, अंततः मकाम पर पहुंच जाता है।
1: ये तो कहा ही गया है, ईश्वर बेटी का जोड़ा निर्धारित किए रहता है।
0: लगन पढ़ने के बाद हर काम की शुरुआत आदि शक्ति के आवाहन से संपन्न होता है।

0: बेटी घर में है तो द्वार पूजा होना ही है। बारात दरवाजे पर आते ही पुरुष सादर आमंत्रित करते हैं, नारियां मंगल गान करती हैं, पंडित मंत्रोच्चार करते हैं।
1: टोले मोहल्ले की औरतें दूल्हा निरखने उमड़ पड़ती हैं, बेटी तो सबकी होती है।
0: योग्य वर देख जन समुदाय कन्या के पिता को दाद देता है, वर देखने की आकुलता बढ़ जाती है। औरतों को पर्दा किया पर्दा भला कहाँ रख सकता है। झरोखों से कन्या भी एक झलक देख मन ही मन प्रफुल्लित हो अपने पिता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करती है।
1: द्वार पूजा के बाद शुरू होता है आगे का सिलसिला। नाउन बुलौआ कहने चली जाती है और नाउ चला जाता है बारात में।
0: नाउ सुहाग का पानी लाता है, नाउ सुहाग का पानी लाता है, फिर नहावन का कार्यक्रम शुरू होता है। सांकेतिक पोखरा खोदने के लिए बुआ की आवश्यकता होती है, मगर वो सहज में तैयार होने वाली नहीं, नीग मांगती है, हट भी करती है।
2: अरे ननद जी, आपका जो हक है मिलेगा, हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देंगे, आप पोखरा तो खोदिए।
1: भाभी, हम पोखरा तो खोदेंगे ही, मगर जब भारी नेग लेंगे।
2: आप चिंता मत करें, जो आपको मिलना होगा मिल जाएगा।
1: आप कुछ भी कहें भाभी जी, मानूंगी नहीं। ससुराल वाले पूछेंगे भतीजी की शादी में क्या पाई हो, तो क्या कहूंगी। इतना दहेज देकर शादी कर रही हैं भाभी, और हमारे लिए इतना झिकझिक।

0: बुआ मनाई जाती हैं, आवश्यकता पड़ती है तो पुरुष वर्ग को भी मौके पर पहुंचकर संतुष्ट करना पड़ता है। है तो देना पड़ता है, नहीं तो वादा करना पड़ता है। ताग्रपात एवं कुरहतन के लिए भसुर को माणों में आना पड़ता है। कन्या के लिए क्या चढ़ावा आया है सबके सामने होता है। औरतों की तो चांदी होती है, कभी कभी इतना तंग करती हैं कि यादगार बन जाता है।
1: फिर आवश्यकता होती है दूल्हे राजा की। इसके बाद का रस्म तो उन्हीं की उपस्थिति में संपन्न होना है। बारात में नाऊ को भेज वर बाबू को तो दरवाजे पर बुलाया जाता है।
0: घराती प्रेम पूर्वक विशेष आसन पर बैठाते हैं। नाऊ एक बार पुनः अंतर जाकर स्थिति का आकलन करता है और पंडित जी से पूछकर दूल्हे को माड़ों में ले जाता है। इस बार औरतें ढंग से देखती हैं और फूले नहीं समाती।
1: दो अनजाने एक साथ, यही तो है ब्रह्म विवाह की विशेषता और हमारे संस्कार एवं संस्कृत की महानता। वर कन्या लकड़ी के बने विशेष पीढ़े पर प्रथम बार एक साथ बैठते हैं और शुरू होता है दाम्पत्य सूत्र बंधन का प्रथम अध्याय।
0: दो दिलों के मिलन का प्रदर्शन दोनों पक्ष के लावा को मिलाकर किया जाता है। ये काम संपन्न कराता है कन्या का भाई।
1: मंत्रोच्चार की गूंज के साथ माता पिता एवं वर कन्या की उपस्थिति में संपादित होता है पाणी ग्रहण।

0: अब तो सिर्फ वही अवशेष रह जाता है जिसके लिए अब तक इतना कुछ हुआ।
1: सिंदूर, जो विवाह का पर्याय है, चुटकी भर उठाकर दूल्हा कन्या की मांग में डालता है। क्षण मात्र में किसी की कन्या किसी की वधू हो जाती है।

0: अध्याय पूरा होता है, दोनों एक दूजे को मन ही मन अपना मान लेते हैं। कन्या की मांग दमक उठती है, माता पिता के मन में खुशी के भाव, आंखों में बिछोह के आंसू।
1: बेटी पराया धन है, दबा भाव उजागर हो जाता है, माया प्रबल हो जाती है।
0: भाभी, बुआ एवं अन्य औरतें बारी बारी मांग बहोरती हैं, साथ ही शुरू होता है स्नेह एवं प्रेम का परिचय।

0: बेटी धीरे धीरे माँ बाप से अलग होने लगती है। माँ बाप चाहते हुए बुला नहीं सकते और बेटी जा भी कैसे सकती, पास ही रहकर दूरी का एहसास।
1: बेटी जिस घर के कोने कोने में चहलकदमी करती थी, उसी घर के एक कमरे में बने कोबर में अपने पति के साथ ले जाई जाती है। बहुसंख्य नारियों में होता है एकमात्र पुरुष दूल्हा। कन्या की सभी परिचित और दूल्हे के लिए सब अपरिचित।
0: भाभियों एवं सहेलियों के लिए सुखद अवसर होता है, वो रूबरू होती है दूल्हे से, खुलकर बात करने का मौका भी मिलता है, कोई डर और न कोई झिझक।
1: प्रहसन प्रसंग छिड़ता है, कन्या की जीत और दूल्हे की हार, यही लक्ष्य होता है कन्या की हमजोलियों का। चालाक दूल्हा भी लाचार हो जाता है, फिर भी गुदगुदाया जाता है, हंसाया जाता है।
0: रात बीत जाती है, भोर होता है, तब बारी आती है ससुर को माड़ों में आने का। पूजनोपरांत ससुर पुत्रवधू का माथ ढकते हैं, टीका लगाकर आशीष देते हैं।
1: समधी पांच भाई मिलकर माड़ों का बंधन खोलते हैं। यहाँ समधी मांग भी करते हैं, उन्हें संतुष्ट किया जाता है। दोनों पक्ष के लोग मिलन करते हैं, प्रसन्न होते हैं और अंदर शुरू होता है करुण क्रंदन।

0: एक ही स्थान, एक ही समय, मगर भाव दो। एक पक्ष के लोगों को कुछ खोने का गम, तो दूसरे पक्ष वालों को कुछ पाने की खुशी।
1: यदा कदा घर में पांव देने वाला पिता बार बार घर में जाता है, निराश हताश, माँ के तो स्वर ही नहीं फूटते।
2: मत रो बेटी, मत रो। जितना ही रोएगी उतना ही बेचैन होंगे बेटी। इतने दिन तक पाला पोसा, अब मेरी ही बेटी मुझसे अलग हो रही है। चुप रहो बेटी, चुप।
0: माँ बेटी पिता भाई का रुदन सुनकर पुरुष स्त्री क्या लगता है दरवाजे के पालतू पशु भी रो रहे हैं। आंगन की तुलसी बस एक दिन पानी नहीं पाई, मुरझा सी गई। रोज कौरा खाने वाला कुत्ता टुकुर टुकुर ताक रहा है। निडर बिल्ली पता नहीं कहाँ चली गई है।
3: भैया आप ही रोएंगे तो चुप कौन कराएगा। बेटी बहन रोकने की चीज है, हमारी भी तो विदाई इसी घर से ऐसे ही उल्टी। मानती हूँ बाबूजी भी बहुत रोए थे, मगर कोई फायदा है इससे? यह मन है ये कि बेटी रोते रोते तो जा रही है, मगर हंसते हंसते आए। चुप हो जाइए भैया, चुप हो जाइए।
0: कहाँ डोरी लेकर दरवाजे पर, सूचना घर में जाती है। कहार और डोली का शब्द माँ बेटी के लिए और दुखदाई हो जाती है। माँ धीरज खो बैठती है।
4: हाय राम, कैसे रहूंगी, किसको बहनी कहूंगी।
2: बेटी
4: कौन अम्मा के घर बुलाएगी, अब कैसे दिन कटेगा और कैसे रात बीतेगी। एक पल भी जिसे न देखो बेचैन हो जाओ। और अब
2: बेटी
0: बेटी पछार खाकर गिरती है, माँ को पकड़ती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। आंख में आंसू तैरता है तो रिश्ते धुधले लगते हैं, मगर जो ही बूंद बनकर जमीन पर टपकता है तो लपकती है पिता के पांव की ओर।
2: बेटी मत रो, मेरा कलेजा पड़ा जा रहा है बेटी। हर बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है बेटी। तुम तो पढ़ी लिखी, मुझसे क्या कहना है, तुमसे क्या कहना बेटी।
1: पहाड़ों के धैर्य का बांध टूटने लगता है। अंदर जाने वाले से कहते हैं दुल्हन जल्दी निकालिए, मंजिल दूर है।
0: नाउन कन्या को पकड़ती है और अन्य औरतों के सहयोग से धीरे धीरे डोली तक ले जाती है। कन्या के रोने का स्वर तेज हो जाता है।
2: बेटी, बेटी, बेटी,
0: भाई को समझा बुझाकर सिवान के बाहर छुपाए गई डोली के पास ले जाया जाता है। रोने की आवाज सुनकर बहन उतावली हो जाती है। डोली रूपी पिंजड़े में कैद लाचार बहन का विलाप के सिवा बचा ही क्या है?
4: बाबू बाबू
2: बेटी मत रो बेटी
4: बाबू
2: मत रो
4: बाबू बाबू जल्दी हम घबरा
2: बेटी
4: राखी में जाइयो तर भैया जरूर जाए
2: हाँ बेटी तेरे भैया जरूर जाएगा राखी में चुभरा बेटी चुभरा
1: औरतें भाई को धैर्य बधाती हैं। वह डोली पर लाल उहार डालकर पर्दा करता है, नाउन कुल्ला कराती है।
0: चारों का हार प्रसन्न मुद्रा में डोली उठाते हैं और चल देते हैं गंतव्य की ओर। बेटी एक बार उहार हटाकर सजल नयन से परिजनों को निहारती है और दूर बहुत दूर बहुत दूर चली जाती है।
1: बेटी धान की बेहन है जिसे स्वजाय खेत से उखाड़कर पराए

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक बेटी का विहान। इसी के साथ ही नाटक अब खत्म समाप्त होता। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
6: इक्कीस जून

0: रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने सुहाने कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एतबार फिल्म से ये गीत।

आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में आपने सुना एतबार फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था हसन कमाल ने और धुन तैयार की थी पप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है खूबसूरत। आवाज़ें हैं अभिजीत और निर्जय पंडित के, बोल गुलजार के, और तर्ज तैयार किया है जतिन ललित ने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने सुना मिशन कश्मीर फिल्म से इस गीत को। बोल थे समीर के और धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने। गाने सुहाने कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: इक्कीस जून सन 2026 की सुबह 9:30 बजे आलमी योम योगा यानी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आप समाज फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम में योगा पर एक तकरीर। इसके अलावा आप सुन सकेंगे आलमी योम योगा पर एक खास रेडियो रिपोर्ट।

0: अभी आप सुन रहे थे यंगितान फिल्म से इस गीत को। इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे उस्ताद खान और चित्रा। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901,65,00,000 रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकतदार ममालिक को 5,36,00,000,00,000 डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3,94,00,000,00,000 डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1,43,00,00,000,00,000 डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं।
2: सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मशक इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।

सभी बहनों का नारी जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अस्मिता। बहनों, आज के कार्यक्रम में होगी आपसे बहुत सारी जानकारी की बातें और साथ ही खूबसूरत मीठे गीतों का होगा साथ। आज के कार्यक्रम की थीम है कठिन परिस्थिति में मानसिक मजबूती की, और साथ ही बात होगी आपसे घर ऑफिस ट्रेवल में महिलाओं की सुरक्षा रणनीति की। साथ ही हम बच्चों की बात में करेंगे, बच्चों को दे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और सरकार द्वारा चलाए गए सुरक्षा योजनाओं की। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि न सशक्त और शिक्षित आत्मनिर्भर नारी न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति की आधारशिला होती है। तो आइए हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां महिलाओं को सम्मान का अवसर, सुरक्षा का अवसर मिले और वो अपने सपनों को खुलकर कर सके साकार। मनो, इन्हीं बातों के साथ आज हम कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत।

बहनों, कठिन परिस्थिति में मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको नियंत्रण में रखते हैं। बहनों, समस्या से भागने के बजाय आप उसका डटकर सामना करें, नियंत्रण पर फोकस करें और बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान न दें। दूसरे लोगों के व्यवहार पर आपका वश नहीं है। अपनी ऊर्जा समय उन चीज़ों को सुधारने में लगाएं जो आपके हाथ में है। भावनाओं को स्वीकार करें और खुद से झूठ न बोले। अगर आप दुखी या निराश हैं तो उन सब भावनाओं को भी स्वीकार करें। बहनों, विशेषज्ञों के अनुसार भावनाओं से भागने की बजाय उन्हें आप महसूस करें। असली मानसिक लचीलापन इससे आता है। और पॉजिटिव आत्मनिर्भर संवाद करें। खुद से हमेशा वैसे ही बात करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। साथ ही बहनों, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चीज़ों को अनदेखा करें, पॉजिटिव चीज़ों के साथ बदलें और अपना दृष्टिकोण भी हमेशा पॉजिटिव रखें। आत्म देखभाल यानी कि सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। साथ ही बहनों, नियमित व्यायाम करें, सही आहार और पूरी नींद आपके मस्तिष्क को रसायन संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। और तनाव से लड़ने के लिए संतुलित आहार लें और साथ ही संतुलित व्यवहार भी रखें। बहनों, तनाव से लड़ने के लिए जो हमें मदद मिलता है उससे संकोच न करें। अगर आप किसी से मदद मांग सकती हैं तो ज़रूर मांगें। कठिन समय में परिवार दोस्तों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है और इस कठिन परिस्थितियों में परिवार या दोस्त आपके साथ हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही आप उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ कहीं घूमने जाएं, कहीं सफ़र पे निकल जाएं, मौज मस्ती करें। देखिए, आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगी। तो बहनों, आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कभी ठुमक ठुमक, कली झूम झूम, कभी घूम

बहनों, घर, ऑफिस और सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर

चुनौती है। अकेले यात्रा करना या देर रात तक काम करने वाले सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही के दौरान महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और असुविधाजनक बातें होती हैं, और परिवहन जैसी समस्याएं का भी सामना करना पड़ता है। ट्रेवल के दौरान बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बसों और ट्रेन में भीड़भाड़ के दौरान यौन उत्पीड़न या कमेंट जैसी घटनाएं आम हैं। मैंने वो असुरक्षित मार्ग पर, कम रोशनी वाले रास्तों में, वीरान ऑटो रिक्शा या कैब स्टैंड पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े ही जोखिम पैदा करती है। तो बहनों, सफ़र के दौरान आप अपनी लाइव लोकेशन किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। अपने लाइव लोकेशन परिवार के सदस्य या अपने पति के साथ ज़रूर साझा करें। आप जब किसी कैब या टैक्सी में बैठें तो पहले ड्राइवर का वेरिफिकेशन करें और साथ ही गाड़ी का नंबर ज़रूर लिख लें या जांच कर लें। बहनों, कार्यस्थल पर देर रात तक रुकने के साथ ही अगर आप घर लौटने के लिए सुरक्षित परिवहन का अभाव है तो महिला सुरक्षा को भी ये प्रभावित करता है। ऑफिस में असहज माहौल, अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न एक बड़ा मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा करता है। बहनों, आप जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे रोकथाम, निषेध या निवारण का अधिनियम 2013 के तहत आप बनी समितियों के आधार पर अपने अधिकारों को जान लें। किसी असहज स्थिति में तुरंत आप HR विभाग या पुलिस को सूचित कर सकती हैं। और ये हुई ऑफिस और ट्रेवल में आने वाली परेशानी और समस्या की बात। पर कुछ महिलाएं घर यानी कि निजी स्थानों पर भी चुनौतियों का सामना करती हैं। महिलाएं घर के भीतर अपने परिवार या परिचितों द्वारा भी हिंसा की शिकार हो जाती हैं। तो बहनों, आजकल इसके साथ ही सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत जानकारी या गलत इस्तेमाल से आप ब्लैकमेल का भी शिकार सकती हैं। अधिकांश महिला ही इस शिकार का हिस्सा बनती हैं। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि आप अपने मोबाइल में कुछ नंबर सेव कर लें, जैसे कि महिला हेल्प नंबर 1091 का उपयोग करें और डिजिटल दुनिया में अपनी प्राइवेसी को सेटिंग को आप मजबूत रखें। किसी भी अजनबी से अपनी निजी जानकारी ना साझा करें और हर समस्या का समाधान है, बस आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी समस्या से आपको घबराना नहीं है और पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ आपको खड़ा रहना है।

बहनों, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी और इसके साथ ही हम करेंगे बच्चों की भी सुरक्षा की बात और बच्चों को भी देंगे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जिससे कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सके। बच्चों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें इससे शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूती मिलेगी और बहुत ज़रूरी है कि इससे वे विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव करना सीखे और आत्मविश्वास के साथ संकट का सामना करना भी सीखे। अपने बच्चों को मार्शल आर्ट जैसे कि कराटे, जूडो या क्राव भी आप सिखा सकती हैं, यह सबसे बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन जब आप के बच्चे घर पे भी हैं तो आप उसको उनको कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर सिखाएं, जैसे कि आप उनको ये सिखाएं कि स्पष्ट रूप से वो कोई भी बात को ना कहना सीखे और साथ ही अपनी सीमाएं तय करें। किसी भी खतरे या अजनबी लोग को देखने पे वो जोर से चिल्ला भी सकते हैं या दूर हटिए या आप मदद मांगना भी सिखाएं। और जो लोग इस बात पे ध्यान देते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को अलर्ट करना चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से दूरी बना कर रहें, किसी भी गलत चीज़ों की संगत में ना पड़े और खतरे की जगह से भागना होता है तो यही उनका उस समय सही निर्णय होगा। साथ ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और किसी बड़े माता पिता या शिक्षक को बताना होगा। बच्चों को रोज़मर्रा

बहनों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे मिशन शुरू किए हैं। मिशन शक्ति नामक एक अम्ब्रेला योजना भी शुरू की है। इसके संबल और उपघटक के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं और हेल्पलाइन संचालित होते हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के को एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र ये कार्य करता है। साथ ही बहनों, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 संकट में फंसी महिलाओं के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन और आपातकालीन टोल फ्री सेवा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली में आप ERSS 112 किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक हेल्पलाइन नंबर है। इसके साथ ही सी बॉक्स या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत को दर्ज करने के लिए उनकी निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल है। साथ ही बहनों, नारी अदालत। नारी अदालत स्थायी स्तर पर महिलाओं से जुड़े छोटे मोटे विवादों और उत्पीड़न के मामलों को सुलझाने के लिए समुदाय आधारित और वैकल्पिक विवाद का नियंत्रण करता है। बहनों, इसके साथ ही स्वराधार गृह कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि निराशित, बेसहारा या तस्करी से मुक्त जीवन यापन कर रही महिलाओं को आश्रय देने का पुनर्वास योजना भी प्रदान करता है। बहनों, भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी सारी योजनाओं को तैयार किया है, तो अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो इन सब योजनाओं की मदद से आप अपनी स्थिति को ठीक कर जीवन को अच्छे तरीके से जी सकती हैं। बहनों, किसी भी खराब परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, अपनी मानसिक मजबूती को बनाए रखना है। चाहे वो जीवन का कोई भी जंग हो, उसे हमें स्वीकार करना है और उसका डटकर सामना करना है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते ही रहते हैं, यही तो जीवन का असली रंग है।

बहनों, मृत्यु दंड फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, और अब इस गीत के साथ दीजिए मुझे आज्ञा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: 21 जून सन 2026 की सुबह 9:30 बजे आलमी योम योगा यानी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आप समाज फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम में योगा पर एक तकरीर। इसके अलावा आप सुन सकेंगे आलमी योम योगा पर एक खास रेडियो रिपोर्ट, जिसमें शहर के दानिश्वरों ने योगा के मुतालिक अपने राय पेश की है। 21 जून को सुबह 9:30 बजे।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर लालचंद्र वर्मा और विनय कुमार की भेंट वार्ता। विषय है कड़कनाथ मुर्गी पालन से रोजगार।
2: सब ई चाहेला कि हम जितना भी खेती बाड़ी का काम करतनी ओसे पैसा जरूर मिले और जितना जल्दी हो सके मिले ताकि हमारे घर का स्थिति सुधरल करे। आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ल हैं डॉक्टर लालचंद वर्मा जी। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहना जनपद सिद्धार्थ नगर में। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में फोन लाइन से जोड़ने खातिर स्वागत करत हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पशुपालन मुर्गी पालन और यही तरह से मछली मधुमक्खी पालन के बारे में रोजगार के अवसर का बात बहुत कही जात बा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जौन मुर्गी पालन खास तौर से देसी या स्थानीय प्रजात का लोग चयन करत रहना, जौन कहीं भी पेड़े पर बैठ जात रहना, छपरा पर बैठ जात रहना या दो पेड़ के बीच में डाली या रस्सी या बांस गाड़ देत रहना, वो मुर्गा मुर्गी बिलार और नेवला के वजह से डर से बचे खातिर ऊपर जात रहना, उनका एक पैसा का खर्चा ना रहला। लेकिन जब जब उनसे अंडा बेचल जात रहा, उनके खड़े बेचल जात रहा, उनके घर का स्थिति में काफी बड़ा योगदान रहा। यह समय चर्चा आप लोग बार बार करे ली, एक अपने ही

0: इसका प्रजाति बा मुर्गा का कड़कनाथ। एकर खासियत का बा, एकर विशेषता का बा?
1: कड़कनाथ एक मुर्गी की ही प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में पाई जाती है। इसके सारे गुण अच्छे हैं, जो बिल्कुल काले होते हैं और इनका खून भी काला होता है, चोंच भी, पंख भी सारे काले होते हैं, जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। इसीलिए वहां के जो आदिवासी थे इसका प्रयोग उसको मांस के रूप में और अंडे के रूप में जंगलों में शिकार करके किया करते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता के कारण ये धीरे धीरे देश के और भी हिस्सों में आने लगा, तो इसकी और भी मांग बढ़ती गई। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसको पालतू बनाया और आजकल कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किसानों के लिए ये बहुत ही वरदान साबित हो रहा है, और इसको ला करके लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और चूजे भी दिए जा रहे हैं। कड़कनाथ बेशक जंगलों की प्रजाति होने के कारण इसमें रोग रोधक क्षमता काफी होती है और इसमें मॉर्टेलिटी भी बहुत कम होती है, और इसकी जो खास विशेषता है कि इसे स्थानीय भाषा में काला मासी भी कहा जाता है। इसके मांस, चोंच, जुबान, टांग, चमड़ी आज सब कुल काला होता है, और किसी कभी कभी शोध के अनुसार ये पता चला है कि सफेद चिकन के मुकाबले इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम होता है, और तो और वहीं पर अमीनो एसिड का स्तर भी ज्यादा होता है। इसका स्वाद भी ब्रायलर देसी मुर्गे से अलग होता है, इसमें आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है, ये प्रोटीन युक्त भी होता है और इसमें वसा नाम मात्र रहता है। सबसे अच्छी जो बात है कि ये दिल और डायबिटीज रोगियों के लिए दवा की तरह काम करता है। इसके सेवन से शरीर में को विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, अमीनो एसिड, कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में मिलता है। काला मुर्गा आसानी से उपलब्ध नहीं होता और देश के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, लेकिन ये अपनी काफी खूबियों के कारण ही हम कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थ नगर पर इसका पालन कर रहे हैं और किसानों को इसको ज्यादा से ज्यादा दे करके इस गुणवत्ता के बारे में बताकर जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसानों के बीच में ये कड़कनाथ मुर्गा काफी लोकप्रिय हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पालन करें।
0: कड़कनाथ का विशेषता हो गई, ओकरे अंदर कौन कौन अन्य गुण बा जौन पौष्टिकता के आधार पर बड़ा महत्वपूर्ण बा। जरूरत यह बात का बा कि एकर चूजा मिली कैसे, आई कितना दिन में अंडा देवे लगी और कितना दिन में ये मांस लायक हो जाला।
1: कड़कनाथ का चिक्स आजमगढ़ में उपलब्ध है, कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थ नगर में भी उपलब्ध है। एक इसमें कमी होती है कि इसकी मादा जो है अंडा का से चूजा नहीं निकालती है, जिसको कहते हैं कि अंडा सेती नहीं है। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे द्वारा एक इंक्यूबेटर का आविष्कार किया गया है, जिसे नरेंद्र इंक्यूबेटर यश कहा जाता है। ये 200 अंडे से लेकर के 352 अंडे की क्षमता का उपलब्ध है। जो किसान लोग इन मुर्गियों का पालन करते हैं, अगर वो एक मशीन रख लेते हैं जो बहुत सस्ते ही दामों पर उनको मिल जाती है, तो उससे चूजा निकाल करके वो आसपास के अपने क्षेत्र में एक रोजगार डेवलप कर सकते हैं, चूजा निकालें और आसपास के किसानों को इसको दें। तो ये चूजा काफी महंगा होता है, इससे उनका व्यवसाय चल सकता है।
0: ये मशीन कितना का आवत हुई?
1: ये मशीन करीब 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच में आती है, और इसको स्थानीय स्तर पर ही डेवलप किया जा सकता है, जैसा हमारे यहाँ इसको बनाया जा रहा है।
0: ई मुर्गी पालन कैला पर कितना दिन में चूजा बढ़ के मांस लायक हो जाला?
1: ये सभी मुर्गियों की तरीके से एक मुर्गी है जिसका एक दिन का चूजा लाया जाता है, और उसे जब हम पालते हैं तो वो करीब 4.5 महीने में वो जवान होता है और इसके बाद अंडा देना शुरू करता है। जब अंडे निकलने लगते हैं तो 15 दिन तक अंडे बहुत छोटे होते हैं, इसके बाद वो अंडे अपनी साइज के आ जाते हैं जो 40 से 45 ग्राम के होते हैं, तो उसको करीब ये मान के चला जाए कि 5 महीने के बाद उसको भरपूर अंडा मिलने लगता है।
0: मांस खातिर जौन नर बाना वो कितना दिन में तैयार हो जाना बेचे लायक?
1: हाँ, इसमें कड़कनाथ डुअल पर्पज जिसको बोलते हैं कि दुईकाजी नस्ल के लिए पाला जाता है। इसके अंडे भी काफी पौष्टिक होते हैं

0: और मांस भी काफी पौष्टिक होती है। मांस के लिए एक पालना है तो कड़कनाथ करीब 3.5 महीने में 1.5 किलो का हो जाता है और ये बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध किया जा सकता है।
1: एकर लागत कितना आवेला, कैसे लोग पालें?
0: इसका जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसको पाला जा सकता है कम समय में। जैसे ये समझ लीजिए कि यदि एक किसान कड़कनाथ मुर्गा का पालन करता है तो ये 5 महीने के बाद अंडा देना शुरू करता है और 18 महीने तक ये अंडा देता है और अपने पूरे जीवन काल में 180 अंडे इससे प्राप्त होते हैं।
1: मुर्गी का
0: हाँ, ये मुर्गी से 180 अंडे प्राप्त होते हैं। यदि कोई किसान उसे 10 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है तो कुल उसे 1800 रुपए प्राप्त होते हैं और वो अपने आखिरी पड़ाव से मुर्गी भी करीब 500 रुपए में बिक जाती है और इस प्रकार एक मुर्गी करीब 1.5 साल में 2300 रुपए की लाभ देती है। यदि चूजे की कीमत डे ओल्ड चूजे की कीमत 90 रुपए है इस समय तथा दाने की कीमत उसे 1.5 साल में करीब 500 रुपए की दाना खाती है। इस प्रकार कुल लागत करीब 590 रुपए की आती है और इस तरीके से शुद्ध लाभ रुपया करीब 1800 से 1900 रुपए प्राप्त होता है। तो यदि किसान 10 मुर्गियों का एक ग्रुप से ये तैयार करता है तो उसे करीब 25 से 1000 रुपए का 1.5 साल में मुनाफा होगा और शुद्ध लाभ के रूप में उसे 2000 रुपए तक मिल जाएगा।
2: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लालचंद्र वर्मा और विनय कुमार की बातचीत। विषय था कड़कनाथ मुर्गी पालन से रोजगार। इसी के साथ ही खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
0: इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन

0: पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप

0: निकाले हैं कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब सुनोस कुमार सुब्बा को आवाज में शब्द गोपाल यंजन को संगीत कर्म यंजन को।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ 14 करोड़ जितनी बहुत बड़ा नंबर है ना पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है ये डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है
0: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
2: गीत संगीत कार्यक्रम को यो अगिलो प्रस्तुति स्वीकार्नुस हीरा देवी वाइवा को आवाज मा लोकगीत

0: राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गर्नुहुनेछ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार ब्रिक्स देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र प्रतिनिधि मण्डलहरूले उदयमान सुरक्षा चुनौतीहरू बारे छलफल गर्नेछन्। नयाँ प्रविधि र आतंकवादसँग लड्नका लागि उपायहरूसँग सम्बन्धित सुरक्षा खतराहरू बारे पनि छलफल गरिनेछ। भारत र दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक प्रशासन र डिजिटल शासनमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। कार्मिक सार्वजनिक गुनासो तथा पेन्सन मन्त्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहले आज नयाँ दिल्लीमा दक्षिण कोरियाका गृह तथा सुरक्षा मन्त्री युन होजुङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो। डिजिटल शासन, सरकारमा प्रविधिको सकारात्मक प्रयोग, सार्वजनिक प्रशासन, क्षमता निर्माण र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह जस्ता मुद्दाहरूमा छलफल गरियो। गृह तथा सहकारी मन्त्री अमित शाहले आज कोल्हापुरमा 14,450 करोड रुपियाँ भन्दा अधिक लागतको श्री अम्बाबाई मन्दिर विकास परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो। यस अवसरमा बोल्नुहुँदै श्री शाहले ऐतिहासिक सहर करबीरमा अवस्थित श्री अम्बाबाई मन्दिर देशभरिका भक्तहरूको आस्थाको प्रमुख केन्द्र भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो परियोजनाले मन्दिर परिसरभित्र आधुनिक सुविधाहरू विकास गर्नेछ। यो परियोजनाले श्री अम्बाबाई मन्दिरको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्पदाको पनि संरक्षण गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, यो परियोजनाले भक्तहरूको लागि आधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्नेछ र कोल्हापुरलाई एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेछ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोशल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR न्यूज कर्सेङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी समाचार। आज राष्ट्रभरि पश्चिम बङ्गाल दिवस पालन गरिँदैछ। वर्ष 1947 20 जुनकै दिन बङ्गाललाई पाकिस्तानको विलयको प्रस्तावलाई बङ्गाल विधानसभाले खारेज गरी हिन्दूहरूका लागि पश्चिम बङ्गालको स्थापनाको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
1: आज राज्यभरमै पश्चिम बङ्ग दिवस धुमधामके साथ पालन किया जा रहा है। राज्य के सभी सरकारी तथा कुछ निजी स्कूलों तथा कार्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दार्जिलिंग तथा कालिम्पोंग जिलों के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में पश्चिम बंगाल के गौरवशाली तथा समृद्ध इतिहास, धरोहर तथा संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। राज्य भर के विद्यालयों में इसी प्रकार के आयोजनों का समाचार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला तथा महकुमा प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यालयों में आज पश्चिम बंग दिवस पालन किया गया। मुख्य समारोह हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और भारत के निर्माण में पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल ने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान देश की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल दिवस केवल एक राज्य के गौरवशाली इतिहास का उत्सव नहीं है, बल्कि उन मूल्यों, योगदानों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने भारत की पहचान को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक परंपरा ने देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मरण रहे, आज 20 जून के दिन ही सन 1947 में पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के निर्देश अनुसार उस समय बंगाल विधानसभा में अविभाजित बंगाल को पाकिस्तान में विलय करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे बंगाल केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अथक प्रयासों से 90 के मुकाबले 126 मतों से पराजित कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन कर हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई तथा मुसलमानों के लिए पूर्वी पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 में अस्तित्व में आया। परिक्रमा के लिए अशोक चर।
0: बंगलादेश का हिंदू समुदाय र विभिन्न सनातनी संगठनहरूले ढाका को शाहबाग क्षेत्र में मानव श्रृंखला विरोध रैली र मशाल जुलूस निकाले। प्रदर्शनकारीहरूले भगवान राम को छवि को कथित अपमान र सामाजिक सञ्जाल में धार्मिक भावना में चोट पुर्याउने सामग्री विरुद्ध कारवाही को मांग गरे।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर the state of Bengal, a great day for the farmer brothers and sisters of the country, a Bikasit Bengal, a Bikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India, the resolve to make the country a Bikasit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
2: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendra, as primary agricultural cooperative society and state district gram panchayat level village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, दिस प्रॉमिस नेवर लूजेस इट्स
1: इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. Addressing a public gathering at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, the Prime Minister extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. He announced that Paharpur would be developed as a Suryagram or solar village with renewable energy-based infrastructure and modern public services. The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: साथियों हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है ओडिशा में बड़ा निवेश आए यहां नए उद्योग लगे इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है
0: Union Home Minister Amit Shah today reiterated the government's commitment to national security and effective border management, stating that efforts to curb illegal infiltration would continue with determination. Mr. Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed significant progress over the past 12 years in the fields of development, cultural rejuvenation, national security and global recognition. He said these years would be remembered as a period of transformative growth in the country's history. Addressing a public gathering after inaugurating the Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur, worth over 1,445 crore rupees, Mr. Shah said that the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Testing Agency, NTA, is conducting a nationwide mock drill as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination, which will be held tomorrow. The exercise, which began at 9 a.m., will continue through the day. More than 2.5 lakh security personnel are participating in the drill, being carried out across examination centres nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centres in the Delhi-Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
2: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय आपसे कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
3: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद विच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट विच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन, एंड टुडेज फंक्शन सिद्धार्थ इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर। वी डोंट जस्ट सी वन प्रॉमिस, वी सी मेनी प्रॉमिसेस टुगेदर। वी सी एन एक्चुअल एग्जीक्यूशन of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही है, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
3: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वॉन्ट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
2: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
2: Even is tarah ki jo takniki hai Vaibhav, aaj se एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister, so excited to see their Chief Minister, and so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव, उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की

बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते

लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा सब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की

की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे,

0: इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टेक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।

0: साथियों,
1: आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, जिसमें टीम की हार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इसमें बात होगी न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच हुए मुकाबले पे, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या कुछ चल रहा है, और इसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड की, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हॉकी पर। हॉकी में हम बात करेंगे FIH नेशंस कप इंडिया वर्सेज चिले पर, इसके साथ जानकारी देंगे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पर, दोहा डायमंड लीग पर प्रस्तुत होगी एक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 के बारे में।
0: जी हाँ, तो ये सारी खबरें आज हमारे साथ आप सुन पाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जो आज के जो मैच खेले जाएंगे उसकी प्रीव्यू के बारे में।

0: मैच में शानदार खेल दिखाया था। नीदरलैंड्स 25 जून को ट्यूनिशिया के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेगा और अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 4 पॉइंट काफी हो सकते हैं।
1: जी हाँ, बात करते हैं दूसरे मैच की, जहाँ पे 4 बार के चैंपियन जर्मनी का मुकाबला आयरिश कोस्ट के साथ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है नन्हे मन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल वाड़ी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: लइका
1: हेलो
0: लोग
1: भगवान, जय
0: जय हिंद,
1: हिंद।
0: यही नारा के साथ आज का ये अपन बैठकी शुरू भेल। लइका लोग, हमन के अपने के कार्यक्रम में कौन कौन ज्ञान विज्ञान के बात अब जरूर हमन के कल जाला, और लइका लोगन के पूरा जानकारी दिया जाला कि आज हमन के कौन दिन मनावल जात बाटे, कौने महापुरुष के जयंती है। तो आज ही क्रम में आज विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में आज हमन के
1: हाँ,
0: मनावत
1: जो
0: हन।
1: 20 जून का दिन बा, वो हर साल जौन बा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के रूप में मनावल जाला। एकर उद्देश्य जौन बा कि संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण जो भी लोग अपन घर बार छोड़ के शरणार्थी के जीवन यापन कर रहल बा, उनके अधिकार के जौन बा रक्षा के लिया उनके प्रति वैश्विक एकजुटता का भाव दिखावल जाए, यही के उद्देश्य से जौन बा हर साल ये दिन मनावल जाला।
0: सबसे पहले भैया, एकरे खातिर 4 दिसंबर 2000 के संयुक्त राष्ट्र महासभा निर्णय ले रहल कि हर वर्ष 20 जून के ई विश्व शरणार्थी दिवस मनावल जाए। ओकरे बाद से ही शरणार्थियन के सम्मानित करे बदे ई दिवस मनावल जाला, साथ साथ जागरूकता बढ़ाए बदे और शरणार्थियन के समर्थन करे बदे ई दिवस मनावल जाला।
1: भैया बिल्कुल एकदम सही बात कहला, केहू भी अपन घर बार सामान्य परिस्थिति में नहीं छोड़ेला, मजबूरी में छोड़ेला, और जब वो भैया बहरे जाला तो ओकरे सामने तमाम तरह का समस्या आवेला।
0: जैसे भैया, ओकरे खातिर रोजगार का संकट हो जाला, ओकर संकट सुरक्षा के हो जाला, और ओकर मानव अधिकार के रक्षा कैसे कैल जाए, और साथे साथे ओकरे लड़कन के भविष्य का भी बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाला।
1: भाई जे अपन घर द्वार छोड़ के बहरे चल गेल मजबूरी में, वो कहाँ रही, का खाई, का पी, ओकर लइका बच्चा कैसे पलिया, कैसे पढ़ाई लिखाई करिए, बहुत बड़ बड़ समस्या है
0: तो
1: भैया।
0: यही नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से निजात पाए बदे शरणार्थी दिवस मनावल जाला, जौने से लोगन के जागरूक कर जा सके। भारत में भी समय समय पर विभिन्न देशन के लोग अब अपने देश में शरणार्थियन के रूप में आश्रय दिहल गए बाटे, और उनके बुनियादी मानवीय सहायता भी प्रदान कैल जात बाटे।
1: भाई देखा, हमन के चर्चा तो आगे भी हुई, लेकिन हम चाहता टी कि लड़का लोगों का भाई इंतजार रहेला कि गीत गौनाई कब हुई, काहे से हफ्ता भर में जौन बा एक दिन उनका कार्यक्रम होखेला, तो जानकारी के साथे साथे भैया मनोरंजन भी जरूरी बा।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
1: बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA डी फार्मा बी फार्मा और एम फार्मा में एडमिशंस शुरू हो गए हैं।
0: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
1: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशंस ओपन। KIPM गीडा गोरखपुर।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: लड़का लोग इस समय जन बाटे मिलावटी खान पान के इतना असर होला कि लड़का लोग उनका स्वास्थ्य कबू खराब हो सकाला। हर व्यक्ति उसे सजग होके रहे, एनाते स्वास्थ्य खातिर ओके स्वस्थ होल बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहे खातिर योग कैल बहुत जरूरी है।
6: भैया बिल्कुल सही बात कहला। और देखा बिहने भैया जनबा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हवे, ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हवे। ये समय भैया एक हफ्ता से जौन बा योग पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा बा, योग सप्ताह मनावल जा रहा बा।

0: बिहने भैया जौन बा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, योग दिवस के शुरुआत कब भइल, योग के का महत्व बा, प्राणायाम के का महत्व बा, पहली बार जौन बा योग दिवस कब मनाओल गई, ये कुल बारे में लड़का लोग जौन बा आज एगो जानकारी सुने भैया अजय कुमार गौतम जी से।
1: 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया तथा 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2015 को राजपथ नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा एक ही योग अभ्यास सत्र में सर्वाधिक देश 84 के नागरिकों की प्रतिभागिता बनी। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर मन विचार एवं कर्म में आत्म संयम रखता है। योग मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वयं के साथ विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक होता है। योग के अलग अलग संप्रदायों परंपराओं दर्शनों धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग पातंजल योग कुंडलिनी योग हठ योग ध्यान योग मंत्र योग लय योग राजयोग जैन योग बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक संप्रदायों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण और अभ्यास क्रम हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक योग संप्रदायों ने योग के मूल उद्देश्यों और लक्ष्य तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अतः योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना संयोग अथवा मिलाना। योग वास्तव में स्वयं के स्वरूप को अनुभव कराने की विद्या है। वास्तव में मनुष्य जीवन योग के अंतर्गत आता है। यह मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है अर्थात बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर ले जाता है। योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म को कौशल रूप से करना योग है। गीता के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी न करना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। अहिंसा किसी जीव को मन वचन और शरीर द्वारा कभी भी किसी प्रकार किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। सत्य हमें जीवन में सदा सत्य वचन ही बोलना चाहिए। अस्ते दूसरों की वस्तु बिना उनके दिए हुए नहीं लेना चाहिए अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य हमें जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाए रखना चाहिए। अपरिग्रह अर्थात परिग्रह का प्रयास न करना आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। नियम के अंतर्गत शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान आते हैं। शौच का पालन करने से अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में आसक्ति का भाव नहीं रहता है। मैत्री आदि की भावना के द्वारा राग द्वेष ईर्ष्या आदि मलों का अभाव होकर मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। मन की व्याकुलता का नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। संतोष से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा सुख नहीं, अर्थात हमें जीवन में कुदरत द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। तप, तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश होता है। तप कई प्रकार के होते हैं, परंतु वह तप जो अपने स्वानुभूति के दर्शन कराए, जिससे अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध होकर उत्थान को प्राप्त हो जाएं, वह तप कहलाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात स्वयं मैं का अध्ययन चिंतन मनन करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर परिधान साधक जब अपनी इच्छा कर्म और प्रत्येक वस्तु जिससे उसके अहंकार की पुष्टि होती है ईश्वर को समर्पित कर दे, वह ईश्वर परिधान है। आसन स्थिर सुखमासनम अर्थात स्थिर सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। जिस क्रिया से स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठा जा सके वह आसन कहलाता है। स्थिर और सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति से मानसिक संतुलन आता है, मन की चंचलता रुकती है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक पूरक कुंभक द्वारा रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। धारणा धारणा का अर्थ है धारण करना। मन में जब किसी विषय को धारण करने की योग्यता आ जाए, कुछ देर तक उस पर स्थिर रहने का अभ्यास हो जाए तो मन की यह अवस्था धारणा कहलाती है। ध्यान ध्यान से हम अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में लगाते हैं उसी विषय में उसे निरंतर लगाए रखने को ध्यान कहते हैं। समाधि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र का आभास होता है और स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब समाधिस्थ अवस्था कहलाती है। ध्यान की अंतिम अवस्था का नाम समाधि है, जो स्थिर चित्त की सर्वोत्तम अवस्था है। इस प्रकार जब हम अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें जीवन में शारीरिक और मानसिक कई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जिसका उपयोग हम समाज के निर्माण में कर सकते हैं। योगासन का ग्रंथियों पर असर वास्तव में किसी व्यक्ति के शरीर मन तथा बुद्धि का उचित रूप से विकास होने पर ही उसे पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। वर्तमान समय में बच्चों का शारीरिक विकास उचित समय पर उचित रूप से नहीं हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण बच्चों के शरीर में स्थित विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का अनियंत्रित अति सक्रिय या निष्क्रिय होना है। ये ग्रंथियां विभिन्न प्रकार से रसराव छोड़ती हैं जो शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। इन ग्रंथियों को नियंत्रित सम अवस्था में करने के लिए योगासन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले आसन पीनियल ग्रंथि सूर्य नमस्कार योग मुद्रा पादहस्तासन भ्रामरी कपालभाति सर्वांगासन शीर्षासन से प्रभावित होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि ये शीर्षासन से अधिक प्रभावित होती हैं। थायराइड ग्रंथि यह ग्रंथि सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन विपरीत करणी से प्रभावित होती हैं। यकृत मत्स्येंद्र आसन दाईं ओर से पीला उड्डयन बंद नौली क्रिया क्लोम मत्स्येंद्र आसन बाईं ओर से एड्रीनल ग्रंथि मयूरासन सिंहासन नेति उज्जायी प्राणायाम से वृक भुजंगासन सूर्य नमस्कार मंजारी आसन शशकासन से अंडकोश सिद्धासन पद्मासन वज्रासन और मूल बंद वज्रोली मुद्रा गोमुख आसन से प्रभावित होती हैं। योग के द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। जब हम आसन प्राणायाम ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो हमारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहते हैं। हमारा पारिवारिक सामाजिक संबंध अच्छा और मधुर रहता है। हम बेवजह का क्रोध ईर्ष्या संकोच लालच डर आदि से दूर रहते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति कर पाते हैं। हम मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आज के परिवेश में जहां हर कोई तनाव भरी जिंदगी जी रहा है, एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक को आसन प्राणायाम ध्यान काफ़ी हद तक उनको तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकता है। योग का सामाजिक एवं नैतिक असर, जब मानव अष्टांग योग के यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान अपने जीवन में शामिल कर उसका अभ्यास करता है, तो समाज से सभी बुराइयां समाप्त होने लगती हैं तथा एक स्वस्थ मानव समाज का निर्माण होने लगता है। आज हर कोई झूठ, चोरी, लालच, असंतोष, हिंसा, व्यभिचार, दिखावा से घिरा हुआ है। लोग केवल अच्छी बात सुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि पहले कोई दूसरा अच्छा करे, तब वह अच्छा करेगा। आजकल केवल आसन और प्राणायाम पर ही जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। योग की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें उसके बहिरंग यम नियम का कठोरता से पालन करना होगा, तब
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हाँ भैया लयिका लोग, ये संदेश से पहले जो जानकारी सुन लें योग के महत्व के बारे में अजय प्रकाश गौतम से, उम्मीद बा कि लयिका लोगन का पूरहर जौन बा ज्ञान वर्धन भइल हुई। भैया एक चीज़ लयिका लोगन से कहे के बा कि देखा अभी तक भैया स्कूल बंद रहल, अब जौन बा कुछ दिन में स्कूल खुली, तो कई बार का होखेला कि भाई इतना दिन से लयिका लोग घरे में आराम कर रहा बाटें, तो अनमना मन से जौन बा स्कूल लोग जा लें, लेकिन अभिने से भैया जौन बा अपन तैयारी कैले कि भाई स्कूल मान ला निश्चित बा कि कौने दिन से जाए के बा, तो उसे संबंधित जौन भी तैयारी बा अभिने से अपन लड़का लोग जौन बा कैले, जे घरे में गार्जियन बा उनके भी जिम्मेदारी बा कि भाई जौन भी तैयारी बा, जैसे मान ला कि अधिकांशतः लड़का लोगन का भैया जौन कापी किताब बा लोग ले ले ले बाटें, लेकिन कुछ ऐसा भी लड़का बच्चा बाटे भैया जे जोन बा अबहिन यहाँ वहाँ से काम चलाओ तो अपन कापी किताब नहीं ले ले बा,
3: वो अपने पढ़ाई खातिर व्यवस्थित हो जा। और सबसे बड़ी बात बाटे कि योग के ध्यान में रखे हुए कुछ न कुछ योग करे, जोने से अपने आप के स्वस्थ रखी, अपने परिवार के भी प्रेरणा दे कि योग कर जा।
0: भैया देखा बहुत बढ़िया याद दौला बिहने जोन बा योग दिवस भी है, और यही वजह से हमन के जोन बा ये जानकारी भी देवली। हाँ तो योग के अपनावे और स्वस्थ रहे, और भैया देखा यही के साथ अब हमन के चलने के जून भी हो गए, चलल जाए लड़का लोग, जय हिंद।

0: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बालवाड़ी आकाशवाणी का। ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम सोनी निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी कैले। योजना के तहत 18,880 करोड़ रुपया से बेसी कर राशि सोझे 9,44,00,000 से बेसी किसानन के खाता में DBT के जरिया से भेजल गई। एक किस्त से देश का 2,18,00,000 से बेसी महिला किसानों लाभान्वित भैलिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी से एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ले। एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिया से वहां के कहने की ये राशि खाली आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अन्नदाता किसानन के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार के अटूट प्रतिबद्धता का मजबूत प्रतीक बा। जौनपुर के किसान मुरारी लाल यादव प्रधानमंत्री सम्मान निधि का किस्त जारी भैले पर प्रधानमंत्री का आभार जतवले।
1: आज प्रधानमंत्री द्वारा 23वीं किस्त जारी की गई किसानों को, उससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है और खाद पानी या गेहूं का जो भी सिंचाई में काम आता है उसके लिए हम प्रधानमंत्री के सरकार के आभारी हैं। किसानों को बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई वगैरह देने के लिए काम आ जाता है। जैसे छोटे मोटे किसान हैं उनको फायदा हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लेके 1,766 करोड़ रुपया लागत का 221 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि ई विकास परियोजना बुंदेलखंड के साथ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत संरचना और जन सुविधा के नया मजबूती देत, क्षेत्रीय विकास के नया गति देई।

0: की आपूर्ति बाधित हुई, तब मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर ऊर्जा संकट न पैदा हो इसके लिए कार्य किया गया, जनता को राहत देने का कार्य किया गया।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से बिहने होखे वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के तैयारी के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कैल जा रहल बा। भिन्न ही 9 बजे शुरू भइल ई अभ्यास पूरा दिन चलत रहल। एह अभ्यास में 2.5 लाख से बेसी सुरक्षा कर्मी शामिल हवें। एकर उद्देश्य परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन तय कैल हवे। एजेंसी के हिसाब से नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरन और विदेश के 14 गो शहरन में आयोजित कैल जाई, जिसमें 22,79,000 से बेसी अभ्यर्थी शामिल हुई हैं। प्रदेश में परीक्षा में शामिल होखे वाले अभ्यर्थियन खातिर रेलवे और रोडवेज प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम कैल गए हौ। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार बतौले कि लखनऊ मंडल में कुल 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलैले का योजना हौ। इसमें पर्याप्त कोच लगावल गए हवें और विद्यार्थियन के कोनहु तरह का असुविधा नहीं हुई। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला फेरा, जिसमें मकानन के सूची बनावल और आवास जनगणना शामिल बा, 22 मई 2026 से 20 जून 2026 ले तय समय के भीतर 100% सफलता के साथ ही पूरा हो गई। एह कार्य का सफलता के राज्य खातिर एगो ऐतिहासिक उपलब्धि बतावल गई हौ। राज्य भर में करीब 1.04 लाख गांव और 14,983 वार्डन के कवर करत 1,195 प्रभार क्षेत्रन में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित कैल गई। संपूर्ण अभियान 3,90,717 मकान सूचीकरण ब्लॉकन के जरिया से पूरा कैल गई। केंद्र सरकार 16 गो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाई के बनवले बिक्री और वितरण पर जुड़ते प्रभाव से रोक लगा दिहले बा। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैल गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बादे लिहल गई। समिति पौलस की इस सग्रो दवाई के संयोजन का पुरहर चिकित्सीय औचित्य नहीं हो और एकरे उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सके।

0: प्रतिबंधित दवाई में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐठन और कुछ एंटीबायोटिक दवा शामिल बा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेने दुनिया भर में मनावल जाई। एह बरिस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग हवे। जवन सज्जो आयु वर्ग खातिर योग के महत्व पर जोर देला। संस्कृति मंत्रालय भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा के दर्शावत देश भर में 100 जगहों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित कयल जाय। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले स्थित तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस किस्त से देश के 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान भी लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज झांसी से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, अन्नदाता किसान के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। जौनपुर के किसान मुरारी लाल यादव ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त जारी होने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: आज प्रधानमंत्री द्वारा 23वीं किस्त जारी की गई किसानों को, उससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है और खाद पानी या गेहूं का जो भी सिंचाई में काम आता है उसके लिए हम प्रधानमंत्री के सरकार के आभारी हैं। किसानों को बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई वगैरह देने के लिए काम आ जाता है। जैसे छोटे मोटे किसान हैं उनको फायदा हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 1,766 करोड़ रुपए लागत की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं बुंदेलखंड के साथ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करते हुए क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी।
2: विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी। मैं केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके कार्य कर रही है। आपने देखा होगा जब अमेरिका और ईरान के युद्ध में पूरी दुनिया के अंदर ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई, मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर ऊर्जा संकट न पैदा हो इसके लिए कार्य किया गया, जनता को राहत देने का कार्य किया गया।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा को का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे और रोडवेज प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल में कुल 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की योजना है। इनमें पर्याप्त कोच लगाए गए हैं और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसमें मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना शामिल है, 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक निर्धारित अवधि के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो गया है। इस कार्य की सफलता को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया है। राज्य भर में लगभग दशमलव

4,04,00,000 गांवों और 14,983 वार्डों को कवर करते हुए 1,195 प्रभार क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित की गई। संपूर्ण अभियान 3,90,717 मकान सूचीकरण ब्लॉकों के माध्यम से पूरा किया गया। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झांसी में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
3: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: पंचो जय जवान जय किसान।
9: भैया देखा, नारा लगा ला और बैठकी के शुरुआत भइल। और भैया देखा, कुछ चीज ऐसा बा खेती बाड़ी में कि जौन हरदम भैया बढ़िया दाम जौने का मिलेला। अब देखा, अगर बात कल जाए नींबू के, तो भैया साल भर नींबू के बाजारी में मांग रहेला, एकर दाम भी बढ़िया मिलेला। जे भी नींबू लगौले बा, अक्सर एक समस्या देखले में आवेला कि नींबू में फल तो लगेला, लेकिन का होला कि फल गिर जाला या फल अगर बा तो फट
8: जाला।
9: तो एकरे पीछे भैया जौन सबसे महत्वपूर्ण कारण बा, उ ई बा कि जो नींबू का पौधा बा, ओमे नमी का पर्याप्त मात्रा होखे के चाही, लेकिन नमी

0: में जौन नमी के जौन स्तर बा ओमहर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होके के चाहिए। जैसे अगर पानी दिहल जा रहा बा तो हमेशा हल्का पानी दिहल जाए, लेकिन कई बार का होला कि पंच भाई एकदम जौन बा कई बार पानी चला जाने, ज़्यादा पानी भर दे लें, और कई बार जौन बा पानी के कमी हो जाला। तो ई जौन बा बिया जौन असमानता बा एकरे वजह से जौन फल बा नींबू को फटेला। एकरे अलावा
1: साथ साथ पोषक तत्व कभी कमी,
0: हाँ भैया, पोषक तत्व के जैसे मान ला कि बोरेक्स हो गई जौने के सुहागा कहल जाला, या जौन बा कैल्शियम के अगर कमी हो गई तब्बो जौन बा फल फटेला। एकरा खातिर किसान भाई लोगन के उपाय करे के पड़ी कि जौन बोरेक्स के बाद भेल भैया बोरान के नाम से भी के जानल जाला, बोरान के जौन बा करीब 1.5 मिलीलीटर मात्रा ले लें और 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। जैसे 1 लीटर पानी ले लें तो वहाँ 1.5 मिलीलीटर जौन बा बोरान और 1 मिलीलीटर कैल्शियम मिला लें, ओकरे बाद ओकर छिड़काव करें। अब पौधा जौना हिसाब से भैया छोटहन बढ़हन बा वो हिसाब से पानी के व्यवस्था करके और यही अनुपात में दवाई मिला के ओकर छिड़काव करें। और
1: मतलब भैया कहले के मतलब ये अगर फल फटत है तो बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा पेड़ में नहीं होना चाहिए
0: जी,
1: और लगातार सूखा भी नहीं होना चाहिए,
0: हाँ, तो नमी के जौन मात्रा बा वो हमेशा लगभग समान होके के चाहिए। जब भी पानी दिहल जाए तो वो जौन बा हल्का जौन बा पानी होके के चाहिए। और जो पोषक तत्व की बात कैला तो हम पोषक तत्व बतौली वो अनुपात में जौन बा ओकर छिड़काव करें। एक बार छिड़काव कर लें ओकरे बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर दूसर का छिड़काव कर दें। और एक चीज़ और जौन बा जरूरी बा कि जौन पौधा बा नींबू के ओकर साफ सफाई रखें। कई बार देखाला कि होला का कि ओमन कई बार जाला वगैरह लग जाला, इतना जाला लग जाला कि जौन बा दूर से देखले पर भैया लगेला कि हाँ जौन बा पूरा एगो पूरा ओकर ऊपर तह बन गई बा,
1: फल फल भी विकास नहीं कर पावा,
0: हाँ विकास नहीं कर पावला। तो पौधा के साफ सफाई रखें, जाला जैसे लगे ओके हटा दें। तो थोड़ा सचेत रही अगर पंच भाई तो जो नींबू का पौधा बा ओमन जौन फल लग रहा बा वो भैया गिरी नहीं और फटी नहीं। जौन मुख्य फसल है अभी अपने यहाँ धान खरीफ के ओकर रोपाई अपन किसान भाई कर रहा बाटें, रोपाई में उर्वरक का प्रबंध कैसे कैल जाए, मतलब कौन उर्वरक कितना मात्रा में डालल जाए कब डालल जाए, ये बारे में जानकारी जरूरी बा। हम चाहता थे कि किसान भाई आज यही विषय पर एगो जानकारी सुने डॉक्टर एस के तोमर से, और इनसे बात कही कर रहा हूँ विनय कुमार।
2: जे किसान भाई धान का बेहन डल्ले बाटे अब वो अपने रोपाई खातिर तैयारी करत बा। धान का रोपाई कैसे कैल जा, कैसे खाद का इंतजाम कैल जा, एकरे खातिर जानकारी देवे आज अपने कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ल हुआ डॉक्टर एस के तोमर जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। धान के रोपाई करत समय कौन कौन खास बात ध्यान रखे के चाहिए?
3: देखिए, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी किसान भाई धान की रोपाई करने जाते हैं तो दो तीन बातों का विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो धान की आपकी नर्सरी है वो देख लें कि 21 से 25 दिन की नर्सरी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। सामान्य दशा में जहाँ आपकी जमीन जो है ऊसर नहीं है, अगर ऊसरीली जमीन है तो वहां पर आपकी नर्सरी जो है 35 से 40 दिन की नर्सरी अच्छी रहती है। एक बात का तो ध्यान रखें। दूसरी बात का ध्यान रखना है किसान भाई को कि आप जब रोपाई करते हैं तो आपके जो हमारी देसी प्रजातियां जिनको हम कहते हैं ओपी प्रजातियां भी कहते हैं, उनकी प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या या जो पूंजे होते हैं उनकी संख्या 50 प्रति वर्ग मीटर होने चाहिए। हाइब्रिड में ये संख्या कम हो सकती है क्योंकि उसमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं, लेकिन ओपी वैरायटी में हमारी कल्लों की संख्या 50 कम से कम होनी चाहिए, इसको किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप रोपाई करने जाते हैं तो ये ध्यान रखें, अपने लेबर को ये ताकीद करें कि आप जो धान है वो ज्यादा गहराई पर न गाड़े, तो उसकी जो गहराई है उसको सामान्य गहराई पर रखें। कई बार किसान भाई जब आप पाटा या लेवा लगाते हैं रोटावेटर से, ऊपर की मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है और लेबर जो है उसको रोकने के लिए बहुत गहराई तक उसको गाड़ना पड़ता है क्योंकि पौधा रुकता नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर रोटावेटर से आपने लेव लगवाया हुआ तो थोड़ा मिट्टी जब पौधे को पकड़ने लायक हो जाए तब आप उसको जो है रोपाई कराएं। ज्यादा गहराई पर रोपाई करने से आपके कल्ले कम निकलते हैं और देर से निकलते हैं, तो एक चीज तो किसान भाई को ये रोपाई में ये ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि रोपाई आपको कब करनी है, जो समय है आपका उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। देखिए हमारे यहाँ जो मध्यम अवधि की प्रजातियां हैं या लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उनकी रोपाई हर हाल में आपको जून लास्ट तक आपको कर लेनी चाहिए, यानी कि जून का जो आखिरी सप्ताह होता है उसमें अगर रोपाई कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। और आप इसके बाद अगर रोपाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे तो रोपाई जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के और 15 जुलाई तक सामान्य प्रजातियों की रोपाई किसान भाई कर सकते हैं। जहां तक सुगंधित धान की बात है और खास करके हमारे क्षेत्र में चूंकि काला नमक की खेती बहुत होती है तो काला नमक की जो रोपाई है वो किसान भाइयों को चाहिए कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में किसान भाई करें, तो उसमें सुगंध आपको अच्छी मिलेगी। और जिसके लिए आप काला नमक की खेती करना चाहते हैं उसका जो फ्लेवर है एरोमा जिसको कहते हैं वो अच्छा आएगा। तो किसान भाई इन चीजों का जो है जरूर ध्यान रखें। जो लंबी अवधि की प्रजाति है खास तौर से उनकी जो रोपाई है वो थोड़ा इसके पहले किसान भाई कर सकते हैं जिससे आपका गेहूं की बुआई को लेट ना हो। तो इस चीज को किसान भाई ध्यान रखते हुए आप जो है रोपाई करें।
2: पौधा से पौधा का दूरी जैसे आप बतौली हैं कि 1 मीटर लम्हर 1 मीटर चाकर खेत बाटे वो में 50 गो पूंजा होके के चाहिए आ एक जगह 2 गो धान का पौधा लगे के चाहिए।
3: हाँ,
2: धान ज्यादा गहराई पर रोपाई ना करे के चाहिए। यही तरह से बढ़िया उपज मिले माटी का जांच करावला के आधार पर खाद जौन बा ओकर कितना प्रयोग करे के चाहिए।
3: हाँ देखिए इसमें एक जो रोपाई की हम बात कर रहे थे कि 50 पौधे होने चाहिए प्रति वर्ग मीटर, इसमें जो दूरी है अगर किसान भाई लाइन से रोपाई करता है, ज्यादातर हमारे किसान भाई लाइन से रोपाई नहीं करते हैं, हम किसान भाई से ये भी आग्रह करेंगे कि हमेशा लाइन से रोपाई करें। इससे क्या होगा कि पौधे को दूसरे पौधे से दूरी सामान्य होने के कारण उसको जो अपनी भोजन लेने का जो स्थान चाहिए वो उसको पर्याप्त मिलेगा, तो आपकी पैदावार होगी। इसके लिए 20 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधों की रोपाई करें। दूसरा आपने पूछा कि उर्वरकों के बारे में, दो चीजों को विशेष तौर से किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी वो प्रजातियां हैं जो मध्यम से लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, इनमें प्रति हेक्टेयर जो नत्रजन पोटास फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा है एनपीके जो तत्व रूप में हम कहते हैं वो 150 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास ये प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में किसान भाई को देना चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम उर्वरक के रूप में कैसे बताएं, इतना होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसान भाई को ये देना चाहिए कि आपको प्रति एकड़ 115 किलोग्राम यूरिया 52 किलोग्राम डीएपी और 30 किलोग्राम 27 से 30 किलोग्राम आती है मात्रा लेकिन उसको देखते हैं 30 किलोग्राम पोटास जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं ये प्रति एकड़ मात्रा आपको देनी चाहिए। इसमें फास्फोरस और पोटास और नत्रजन की 1/3 मात्रा आप जो है रोपाई के समय अपने धान के खेत में देंगे, बाकी जो 2 डोज बचती हैं वो कल्ले बनते समय और बाली आते समय बाली निकलने के पहले आप अपने खेत में देंगे। तो इसको आप ये तो उर्वरक की बात हुई कि आप कितना देंगे। अब बात आती है जिंक की। देखिए जिंक एक ऐसा तत्व है जो पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए और हम ये देखते हैं कि किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। एक तो जिंक को हर साल आपको खेत में नहीं देना है, अगर बहुत कमी आपके खेत में आपके पौधे में नहीं दिखाई देता है तो हर साल नहीं देना है, और अगर आप देना है आपको तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट आप खेत की तैयारी के समय मिलाएंगे। रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं उस समय आप जिंक को नहीं डालेंगे। तीसरी बात, जब आप देखते हैं कि हमारी नर्सरी में ऊपर से पत्तियां सफेद हो रही हैं और आप खेत में आप रोपाई करते हैं और पत्तियां सफेद होती है तो वहां पर अगर आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो फेरस सल्फेट का छिड़काव एक होना चाहिए और छिड़काव जो होगा उसमें 4 ग्राम फेरस सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी नर्सरी में या आप अपने खेत में

0: आप आयरन तत्व की कमी है वहां पर आप छिड़काव करेंगे। जहां पर सुगंधित दान की बात करते हैं हम या काला नमक दान की बात करते हैं, तो इसमें किसान भाई को ये चाहिए कि रासायनिक उर्वरकों का अगर संभव है तो कम से कम प्रयोग करें और ज्यादातर कंपोस्ट खाद का या जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। अब किसान भाई को एक चीज का और मैं बताना चाहता हूं कि अब धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरकों के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जो जैव उर्वरक आ गए हैं उनका किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए आसान रास्ता ये है कि अब ऐसे लिक्विड जैव उर्वरक बना रही है जिनसे आप अपने जो जमीन का भी शोधन कर सकते हैं और आप अपने नर्सरी जब रोपाई करने जाते हैं उसका भी शोधन कर सकते हैं। आप जो है उनकी एक सीसी मिलती है, वो एक एकड़ के लिए आपकी पौध शोधन के लिए पर्याप्त होती है। उसको पानी में घोल करके और जितनी भी आपकी एक एकड़ की नर्सरी है उसको कम से कम आधा घंटे के लिए उस पानी में रख दें। जैसे आप पौध उखाड़ते हैं उसको उखाड़ करके कोई गड्ढा बना ले पॉलिथीन सीट बिछा करके उसमें, और उसमें दवाई ये जो हमारा जैव उर्वरक है इसमें तीनों मिले रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं इसमें, एजोटोबैक्टर रहता है और ये फास्फोरस पीएस भी रहता है और पोटास वाला बैक्टीरिया रहता है। ये तीनों जो है आपके जमीन में पड़े हुए जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होते हैं इसको पौधों को उपलब्ध कर दें। तो ये बहुत आसान है और कम पैसे का खर्चे का काम है। इसमें आप आधा घंटा पानी में खड़ा करके और उसको फिर आप रोपाई करते हैं तो ये आपके पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की उपलब्धता बढ़ाते हैं और इससे आपके रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है और 15 से 20%
1: आप चलत चलत एक चीज और बता दें कि बरसात में खरपतवार ढेर निकलेला और एमए खरपतवार नियंत्रण खातिर का उपाय करे के चाहिए।
0: देखिए अभी मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा था कि जब भी आप धान की रोपाई करते हैं तो कोशिश ये करिए और इस बार के मौसम को देखते हुए खास तौर से जैसे बरसात अच्छी बताई गई है फोरकास्ट करते हैं, हमारे यहाँ मौसम का भी एक सेंटर खुला हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र बेली पार्क गोरखपुर पर, दूसरी पूरे सीजन में इस बार बरसात की अच्छी संभावना ये फोरकास्ट आई है, तो इसको देखते हुए पता नहीं पोस्ट इमरजेंस सर्विस साइड का किसान भाइयों को मौका मिलेगा। पोस्ट इमरजेंस का मतलब रोपाई के 25 दिन बाद जो हम बिस्पेरीबैक सोडियम जिसको डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी किसान भाइयों को ये सलाह है कि आप अपने धान की रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर में ब्यूटाक्लोर को आप उसमें डालें, उसकी मात्रा ज्यादा है 1 किलोग्राम है, तो आप इस इन जो रोपाई के जस्ट बाद डालने वाले होते हैं इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट इमरजेंस सर्विस है जिसको हम बिस्पेरीबैक सोडियम कहते हैं उसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से खरपतवारों का पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि पहले प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करें जिसमें ब्यूटाक्लोर होता है, अगर उसके बाद आपके खेत में खरपतवार आते हैं तो आप जो है 30 दिन के बाद में बिस्पेरीबैक सोडियम का इस्तेमाल करें, 100 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें।
1: डॉक्टर एस के तोमर जी आप इतना अच्छा जानकारी देनी कि धान के फसल के रोपाई कैसे कही जाए और एमे उर्वरक प्रबंध आ खरपतवार नाशी का प्रबंध कैसे कर जाए करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया जानकारी तो हो गई लेकिन जानकारी के बाद कुछ मन मनसाइन होके फिर हम इनका बात कही कल जाए।

0: हाँ तो भैया अमन के सुनत रहें लोकगीत राम यज्ञ गुप्ता से। और आज सुन के जब फसल जब बोल जाला तो उसमें रासायनिक खाद ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग डाल देते बाटे, तो इसी का होला फसल के नुकसान होला। खासकर अगर यूरिया की बात कही जाए तो यूरिया के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग के मृदा पर और फसलों पर का दुष्प्रभाव होता है, ये विषय पर हमको सुनल जाए जानकारी। ए पर जानकारी देते बाटे जेपी सिंह और उनसे बात कही कर बाटे भैया कृष्णचंद।
1: जय प्रकाश सिंह जी, आप वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक बीच कृपको गोरखपुर में ही अपने गाँव में एक चीज़ देखे में आवला, तो अपन कितना पंच भाई ऐसा बाटे जो उनकी खानिक उर्वरक के नाव पे यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा बाटे बिना कोनो जांच उच कराए। यूरिया का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा बा एकर अपने फसल या माटी के संरचना पे का जौन बा विपरीत।

0: खेती किसानी के जो निवेश हैं उनको अगर आप बुद्धिमानी पूर्वक सोच समझ के वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी और वन वांछित उपज नहीं मिलेगी। अच्छी उपज मिले, आपकी मृदा की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए आपको इस समसामयिक विषय पर ध्यान देना होगा। यूरिया प्रायः नत्रजन का सबसे प्रमुख स्रोत है, जिसमें 46% नत्रजन पाया जाता है। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि 4:2:1 का एक संस्तुत अनुपात वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है कि यदि 4 किलो नत्रजन का प्रयोग करते हैं तो 2 किलो फास्फोरस का और 1 किलो पोटाश की मात्रा डाली जानी चाहिए। लेकिन पोटाश और फास्फेट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किसान भाई अपनी फसल का तात्कालिक प्रभाव देखते हुए रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का चयन कर लेते हैं। जब हम यूरिया संस्तुत मात्रा से अधिक प्रयोग करते हैं फसल के ऊपर तो सबसे पहले हमको दिखाई पड़ता है कि हमारी फसल खूब हरी भरी हो गई, और जब खूब हरी भरी फसल होती है तो उसके एकाध सप्ताह बाद हमको एक परिणाम दिखाई पड़ता है। किसान दौड़ता हुआ जाता है वैज्ञानिकों के पास, कृषि रक्षा केंद्रों पर जाता है, कृषि अधिकारियों के पास जाता है, साहब हमारे खेत में कीड़े लग गए। किसान भाई, जब कभी भी आप संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी हरी भरी फसल कीड़ों के लिए उपयोगी हो जाएगी, आसानी से उसमें कीट व्याधियाँ लग जाएंगी तो आपकी उपज प्रभावित हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है कि यदि आपने यूरिया की संस्तुत मात्रा अधिक डाली तो आपकी जो मिट्टी है उसमें जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे बोरान है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, इन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता मिट्टी में रहते हुए भी आपके पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपयोग करने की स्थिति नहीं बन पाती है, जिससे आपकी उपज पुनः प्रभावित होती है। जब उपज प्रभावित होगी और मृदा में अवांछित रूप से आप यूरिया मिलाएंगे तो जो मृदा की उर्वरता गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। तो किसान भाई, आप पुनः एक बार इस पर विचार करिए। विचार करने के बाद से आप अपने मिट्टी का स्वयं भी जांच करके देख सकते हैं। प्रयोगशालाओं में तो मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध भी है, लेकिन आप स्वयं भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यूरिया अधिक से अधिक मात्रा में डाली जा रही है वहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग हो रहा है कीट व्याधियाँ कम लगती हैं। जब यूरिया आप अधिक डालते हैं तो आपको उसका प्रतिफल क्या मिलता है कि उससे जो उपज आती है, जैसे जो कंद वाली फसलें हैं, आलू है, तो वह आपको जल्दी सड़ जाता है, आप उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं। प्याज है, उसमें गलन की बीमारी आ जाती है, वह प्रभावित होने लगती है। साथ ही साथ आपके फसल पर जो उसका गुणवत्ता है, जो उसकी पोषक तत्व की क्षमता है, जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसमें भी जो है विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके नाते से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस फसल से जिसमें यूरिया अधिक मात्रा में डाली गई है उससे हम किसान भाई प्रभावित होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब प्रारंभिक दिनों में आप 9 किलो के आसपास जो है उर्वरकों का प्रयोग करते थे तो आपको उससे 8 गुना उत्पादन मिलता था। आज स्थिति ये हो गई है कि उर्वरकों के प्रयोग को ड्योढ़ा करने के बाद भी हमारा उत्पादन या तो स्थिर हो गया है और या जो संस्तुत उत्पादन की गुणवत्ता है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष लगभग 50% ही उत्पादन प्राप्त होता है।
1: हाँ भैया, ये जानकारी सुने के मिलल यूरिया के अत्यधिक प्रयोग का मृदा एवं फसलों पर दुष्प्रभाव जेपी सिंह जी जानकारी देते रहना। यही के साथ ही अपने चलने का जून भेल, चलल जाए। पंचों जय जवान जय किसान।

अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए।

तृप्ति वर्मा, पिता का नाम विनोद कुमार वर्मा। तृप्ति वर्मा की उम्र करीब 21 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 22 मई 2026 से रेवती बलिया से लापता हैं। तृप्ति वर्मा के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी बैरिया जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सलोनी वर्मा, पति का नाम आकाश वर्मा। सलोनी वर्मा की उम्र करीब 19 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 25 मई 2026 से बिनहा बलिया से लापता हैं। सलोनी वर्मा के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी बांसडीह जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हेवंती देवी, पति का नाम नंदलाल राजभर। इनकी उम्र करीब 32 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच है। ये दिनांक 22 मई 2026 से रसड़ा बलिया से लापता हैं। हेवंती देवी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऋचा सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय सर्वजीत सिंह। ऋचा सिंह की उम्र करीब 20 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच है। ये दिनांक 25 मई 2026 से बांसडीह बलिया से लापता हैं। ऋचा सिंह के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी बांसडीह जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सीमा देवी, पति का नाम सुनील कुमार। उम्र 41 वर्ष, लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच। सीमा देवी दिनांक 17 अप्रैल 2026 से भीमपुरा जनपद बलिया से लापता हैं। सीमा देवी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी रसड़ा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चंद्रकला देवी, पति का नाम संतोष राजभर। चंद्रकला देवी की उम्र करीब 30 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच है। ये दिनांक 3 मार्च 2026 से भीमपुरा जनपद बलिया से लापता हैं। चंद्रकला देवी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता

0: है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री कालीदीन शुक्ला व अशोक त्रिपाठी के गाए लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

अभी आप सुन रहे थे श्री कालीदीन शुक्ला व अशोक त्रिपाठी के गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम देसमार। देसमार में आज आप सुनेंगे विश्वंभर गुप्ता की वार्ता योग का महात्म्य।

यह धरती पर जीवन सबसे अनमोल होखेला, काहे से कि कई जन्म के सुफल जब फलित होखेला तो ई मानुष तन मिलेला। तबे न गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बाने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब देखल जाओ कि जब इतना अनमोल ई शरीर मिलल बा त एकरा के स्वस्थ आ निरोग रखे बदे कौनो न कौनो जतन करही के चाहे। यही जतन चाहे उपाय में हमरे ऋषि मनीषी साधु महात्मा पुरखा पुरनिया आ महान विद्वान लोग योग के खोज कैले बाटे लो, जौना की सहारे सभे अपना के निरोग रखे के खूब प्रयास करेला। योग आध्यात्मिक शारीरिक आ मानसिक प्रथा के एगो समूह हवे, जौना के उत्पत्ति अपने प्राचीन भारत में भइल बाटे। योग के शाब्दिक अर्थ जोड़ल होखेला। योग शारीरिक व्यायाम आसन ध्यान आ सांस लेवे के तकनीक के आपस में जोड़ेला। यही से तो एके योग कहल जाला। भौतिक या स्वयं के भीतर आध्यात्म की मिलन ही योग होखेला। योग शब्द के ऊपर संस्कृत के यज धातु से भइल बा, जौना के माने समाधि जोड़ और संयमन होखेला। ऋग्वेद में लिखल बा योगे योगे तव अस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूते। योग की सिद्धि में परम ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान की क्रिया बहुते जरूरी होखेला। लोक कथा की परंपरा के अनुसार भगवान शिव ही सबसे आदि गुरु हमें। बाकी कहीं कहीं तो ऐसनो मिलेला कि हिरण गर्भ योग के आदि प्रवर्तक हमें। सुरहो कला के माहिर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भागवत गीता में बतौले बाने कि हम ही सूर्य के योग बतौने, सूर्य मनु के बतौने, आ मनु राजा इच्छाकु के बतौने। भगवान श्री कृष्ण योग के शिक्षा अर्जुन के भी दिहले रहने। एना तो योग के प्रमाण सिंधु सभ्यता के जीवाश्म में भी मिलल बा। एकरे साथे योग बौद्ध और जैन परंपरा में भी शामिल बा। प्राचीन समय से लेके

आज ले योग के सही रूप में कई गो बदलाव भइल बा। ए बेरा हाल ई बा कि रोग भगावे योग के नारा लगा के खाली आसन आ प्राणायाम तक ही एके समटले के प्रयास कइल जाता। इतने नाही, आज के त योग गुरु आ योगाचार्य लोग आसन या प्राणायाम के ही पूरा योग बता देता। बाकी सही बात तो ई बा कि योग विद्या में कई गो ऐसन ऐसन विधि बाकी ओ योग साधना में दिव्य शक्ति के अर्जित कल जा सकेला। महान परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक योगी कथामृत में ई लिखने बाने कि काशी में लाहिरी महाशय योग के ऐसन सिद्धि प्राप्त कैले रहने की एकदम अपनी घर में जमीन की सतह से कई फीट ऊंचाई पर आसन की मुद्रा में बैठल लौकत रहने। लाहरी महाशय योग क्रिया के पुरहर साधक रहने। योग क्रिया के लक्ष्य ई है कि आदमी आपन आंतरिक आध्यात्मिक रूपांतरण कर ले। ए ब्रह्मांड में फैलल सदृश आ अदृश्य ऊर्जा के समेट के क्रिया योग साधक की चेतना में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कैले में संभव क लिहल ही एकर परम लक्ष्य हवे। योग की माध्यम से मनुष्य आपन आ विश्व के भी बदलने के क्षमता पैदा कर लेला। ये योग में तो कुल संभावना मौजूद बा। अखिल विश्व में स्वामी विवेकानंद जी के बाद योग विद्या के प्रचार प्रसार में परमहंस योगानंद जी के बहुते योगदान बा। परमहंस जी तो योग की प्रचार प्रसार खाती एगो संस्था भी बना देले जौना के नाम योगदा सत्संग सोसाइटी हवे। पश्चिम में ई सोसाइटी 100 साल से ज्यादा पहले से योग के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्राणायाम शिक्षा के प्रचार प्रसार में तन मन धन से समर्पित बा। यही से तो पश्चिम में परमहंस योगानंद जी के योग गुरु के जनक के रूप में मानल जाला। वैसे योग विधि के सुव्यवस्थित आ सुसंगठित आ एगो निश्चित प्रक्रिया में ज्ञान दिले में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के सबसे बढ़हन भूमिका बा। योग सूत्र में पतंजलि योग के परिभाषा बतावत ई लिखले बाने की चित्त वृत्ति निरोधः योगः, जौना के अर्थ होखेला कि चित्त वृत्ति के निरोध को लियल ही योग हवे। हठ योग की परंपरा में गुरु गोरक्षनाथ आ मत्स्येन्द्रनाथ के नाम भी बड़ी सम्मान से लिहल जाला। कई गो सिद्ध महासिद्ध योगी कालखंड के खंडित क के महाकाल के साथे जुड़ के अखिल ब्रह्मांड में विचरण कर रहल बाने। ए परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य स्वरात्मा सूरी जी रहने। उ अपनी परंपरा के ज्ञान बटोर के हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में संग्रहित कैले बाने। एह योग के परंपरा में ऐसनो बतावल बाकी जबले चित पूरा ठीक से सिद्ध ना हो जाए तबले हठा अभ्यास करत रहले के विधान बा। ए पद्धति में इहो बतावल गईल बा कि चित के शुद्धि ही राज योग हवे। पतंजलि योग में अष्टांगिक योग के महत्व के बारे में भी पुरहर चर्चा मिलेला। अष्टांग योग के बारे में ई बतावल गईल बा कि अष्टांग योग रूपी विशाल वृक्ष यम नियम जड़ आसन प्राणायाम अंतरंग योग है। प्रत्याहार कोपल औरी ध्यान फल है आ परिपक्व फल एकदम समाधि के अवस्था है। आखिर में ई कहल चाहब कि योग के आसन तक सीमित रखले से एक आंशिक रूप में समझल जाला। बाकी लोग के शरीर मन आ सांस के एकजुट कैले में योग के लाभ के एहसास लिखे होकर कौनो आयु वर्ग आ शरीर के आकार व्यक्ति के द्वारा योग के चयन क के एकर पुरहर अभ्यास कल जा सकेला। एके केहू शुरू कर सकेला। आकार व बनावट के कौनो

0: नइखे पड़े वाला, काहे से कि हर तरह के लोगन खाती हर तरह के आसन या योग के चुनाव कैले के सुविधा मौजूद बा। कुल मिला जुला के लाग लपेट इतने बा। आ हम रउरा सबसे इहे निहोरा करब कि करत रही योग बनल रही निरोग।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। देश हमार में वार्ता प्रस्तुत कर रहे थे विश्वंभर गुप्ता। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत।

0: বলস ভেঙে গেলে চূড়া লাগে না।
1: अभी सुन रहे थे आप प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप बांग्ला लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 7:18 और 25 सेकंड हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगे।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
5: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
6: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
8: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज का संगीतकार है शंकर जयकिशन। तो शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ फिल्मी गीत आज हम सुनेंगे। पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मोहब्बत की कसम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

फिल्म प्रोफेसर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है, इस देश की कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग

0: 30 बेड के और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के जो पुराने अस्पताल हैं।
1: जी,
0: जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो, तो वह जो परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तब फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा, तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं। और जगह की अपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं,
1: वैसे
0: हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह,
0: अब सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा। तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाहते थे, लेकिन आपने पहले बता दिया और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहाँ रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमाएं भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोले, इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया, एक गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच लखनऊ में खुल गई और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाजियाबाद ने बन के काम करना शुरू कर दिया, तो हर विधा के शोध पर लगातार काम हो रहा है और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है, लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्ववेद की उपशाखा मानते हैं आयुर्वेद को, हम महर्षि सुश्रुत से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का, तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत को, वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनके शरीर ही प्रयोगशाला थी, समाज पे काम किया वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है, तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया,

0: तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन ध्यान इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मान्यता मिली,
1: मान्यता मिली है। और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए, उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से भी अलग से है क्या?
0: तो पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून, और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वारिप्पा का जनक माना जाता है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको स्वारिप्पा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वारिप्पा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिल के समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है, और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, अब जैसे सप्ताह व्यापी, इसके पहले हम लोग एक महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे, तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है, योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा, क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं,
0: ये हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया है।
1: अब काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
0: करें, योग रहे निरोग का नारा देते।
1: बिल्कुल, आपका ये नारा पहले से भी चल रहा है, आप द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुकूज। अनुकूज में आज आप सुनेंगे अली हैदर के गाए कुछ गीत गज़ल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगूज। आज के कलाकार थे अली हैदर। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हाँ, ये सुनते हैं कुछ और गजलें।

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: देर में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए

0: वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग

0: 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
3: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
5: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
3: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme, worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day, along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. He also launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at a superfast pace for Bengal's development.
5: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
3: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency NTA has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
6: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion, addressing a public gathering.

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी

0: गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी

तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं, और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बलसे हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hai vaari jaau re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiske bol hai chalo re mai ram siya darshan. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।